0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने तिरुकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तिरुकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनॉम घेब्रियासिस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 21 राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकारें 2029 से पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करेंगी। मुंबई में श्री शाह ने कहा कि कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुकी है और 2029 से पहले भाजपा एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी

0: कि हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Today, Hindi is one of the widely spoken languages in the world and the first language of more than 52 crore people. Union Home Minister Amit Shah will attend the Hindi Divas 2026 program and the 6th All India Rajbhasha Sammelan official language conference in Navi Mumbai today. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said that Hindi language is not the competitive language of any other language but an important connecting thread of national unity.
1: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Home Minister Amit Shah has said that BJP-led NDA governments in 21 states will introduce the Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP-NDA-ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. The Home Minister also said a system is being established to ensure justice can be delivered within 3 years. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown, where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on September 12th and 13th, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international

आंगन के आज की खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मंजुला। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आपके जीवन में सुख समृद्धि और नई उम्मीदें लेकर आए और हर विघ्न दूर करें। आज का दिन कई खूबसूरत रंगों से सजा है गणेश चतुर्थी। साथ ही हम बात करेंगे हिंदी दिवस की, हरतालिका तीज की, परंपराओं और खूबसूरत रंगों की, स्वाद की दुनिया और गीत संगीत तो होंगे ही जो इस खुशनुमा माहौल को और भी खास बना देंगे। तो इस खास दिन के खास सफर में बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन और आज के दिन को सेलिब्रेट कीजिए।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले को फिल्म इलाका से। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आज घर घर में बप्पा का स्वागत हो रहा है। कहीं ढोल ताशों की गूंज है, कहीं फूलों और रोशनी से सजा घर है, तो कहीं सुबह से ही रसोई में बन रहे हैं बप्पा के सबसे पसंदीदा मोदक। और आज का दिन पूजा का सिर्फ त्योहार नहीं है, ये हमारी संस्कृति, हमारी कला और साथ मिलकर उत्सव मनाने की खूबसूरत परंपरा है। खासकर महाराष्ट्र में आज का दिन, जहां बप्पा के साथ संगीत, ढोल, ताशे, सजावट और सामूहिक उत्सव की रौनक देखने को मिलती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, समृद्धि और शुभारंभ का देवता माना जाता है, यानी नए काम से पहले उन्हें स्मरण किया जाता है। और बप्पा के रूप में भी कितने सुंदर संदेश छिपे हैं। अब जरा गणपति की प्रतिमा पर गौर कीजिए। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े कान, छोटी सी आंखों में एकाग्रता और बड़े कानों में जैसे कोई संदेश। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, सोच समझ कर निर्णय लीजिए। गणेश जी का वाहन मूषक भी अपने आप में एक दिलचस्प प्रतीक माना जाता है। इतना बड़ा व्यक्तित्व और वाहन इतना छोटा, मानो संदेश ये हो कि बुद्धि और विनम्रता के सामने आकार मायने नहीं रखता, तो हमें अनुकूलन की याद दिलाती है। कभी मजबूत, कभी बेहद कोमल, शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हर परिस्थिति में एक जैसा व्यवहार नहीं, जहां जरूरत हो वहां शक्ति, जहां जरूरत हो वहां पे थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाया जाए। इस बार बप्पा का स्वागत करते हुए प्रकृति का भी ख्याल रखें दोस्तों। मिट्टी की प्रतिमा, प्राकृतिक रंग और पर्यावरण अनुकूल सजावट और विसर्जन को अपनाएं। आखिर बप्पा से हमें सुख, शांति और प्रकृति की रक्षा की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आस्था से प्रकृति को नुकसान क्यों पहुंचे? तो इस गणेश चतुर्थी बप्पा आपके घर खुशियां लेकर आए, आपके जीवन में हर विघ्न दूर करें और हर नई शुरुआत को शुभ बनाएं। आपके घर में भक्ति की रोशनी रहे, रिश्तों में मिठास रहे और मन में विश्वास बना रहे।

अभी हम सुन रहे थे सुरेश वाडेकर को फिल्म काल चक्र से। और हरितालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रृंगार की चमक, मेहंदी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और शिव पार्वती के प्रेम में आस्था। हरितालिका तीज भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व है जिसमें भक्ति के साथ साथ प्रेम, संकल्प और नारी के आत्मबल की भी खूबसूरत झलक दिखाई देती है। तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी इसी तपस्या और अटूट संकल्प की स्मृति में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। और आज का दिन सिर्फ व्रत और पूजा का दिन नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी लोक संस्कृति का उत्सव भी है। 16 श्रृंगार, हाथों में रची मेहंदी, हरे लाल रंग के परिधान, तीज के लोकगीत और सखियों के साथ मिलकर उत्सव मनाने की परंपरा इस पर्व को और भी खास बना देती है। अब जरा अपने घर की तीज याद कीजिए। किसी के घर में आज मेहंदी लग रही होगी, किसी कहीं सास अपनी बहू को तीज का सामान दे रही होगी, कहीं सहेलियां मिलकर लोकगीत गा रही होंगी और कहीं दादी नानी पुरानी तीज की कहानियां सुना रही होंगी। और अलग अलग राज्यों में इसे मनाने के अपने अपने खूबसूरत तरीके हैं। खासकर उत्तर भारत में तीज के लोकगीत, झूले, श्रृंगार और सामूहिक उत्सव इसकी पहचान बन चुके हैं। और शायद इस पर्व की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हरतालिका तीज हमें माता पार्वती के उस संकल्प की याद दिलाती है कि अपने जीवन के फैसले में अपनी इच्छा, विश्वास और आत्मबल का उतना ही महत्व है। तो आइए आज के इस पावन अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती से सभी के जीवन में प्रेम, विश्वास, सुख और सौभाग्य की कामना करें। हरतालिका तीज के इस पावन पर्व पर आपको और आपके परिवार को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले को, फिल्म थी बलमा। और आज 14 सितंबर है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस। आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, हमारे भावों की आवाज है, वो भाषा जिसमें माँ की डांट भी अपनापन लगती है, दोस्तों की हंसी और भी खुलकर सुनाई देती है, और दिल की बात कहने के लिए अक्सर किसी शब्द कोश की जरूरत नहीं पड़ती। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसी ऐतिहासिक दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हिंदी की खूबसूरती सिर्फ इसके इतिहास में नहीं है, इसकी विविधता में भी है। हिंदी अपने साथ देश के अलग अलग इलाके, शब्द, बोलियां, मुहावरे और संस्कृतियां लेकर चलती हैं। इसमें संस्कृत की गंभीरता है, लोक भाषाओं की मिठास है और

बदलते समय के साथ नए शब्दों को अपनाने की सहजता भी, और शायद यही किसी भी जीवंत भाषा की पहचान है। वो समय के साथ बदलती है लेकिन अपनी आत्मा नहीं खोती। आज हिंदी दिवस पर सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हम हिंदी कितनी बोलते हैं, बल्कि ये भी है कि हम हिंदी को कितनी सहजता से स्वीकार करते हैं। क्योंकि अपनी भाषा से प्रेम करने का मतलब दूसरी भाषा से दूरी बनाना नहीं है दोस्तों। जितनी भाषाएं हम सीखें उतनी ही हमारी दुनिया बड़ी होती है, लेकिन अपनी मातृभाषा या अपनी सहज भाषा में सोचने और महसूस करने का अधिकार अपनी जगह बेहद खास है। तो आज हिंदी दिवस पर हिंदी को सिर्फ शुभकामनाओं तक सीमित ना रखें, इसे बोलिए, पढ़िए, लिखिए और सबसे जरूरी इसे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाइए। क्योंकि भाषा सिर्फ शब्दों का माध्यम नहीं होती, भाषा हमारी स्मृतियां संभालती है, हमारी संस्कृति को आगे ले जाती है और आने वाली पीढ़ियों तक हमारी पहचान पहुंचाती है।

अभी हम सुन रहे थे अलका याग्निक को, फिल्म थी जख्म। और दोस्तों, एशिया कप फिर से भारत के नाम। टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराकर महिला एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है, वो भी रिकॉर्ड 8वीं बार। मैदान पर शुरू से ही भारतीय टीम का इरादा सिर्फ खेलने का नहीं था, जीतने का था। हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाई, दबाव में हर पल को आत्मविश्वास में बदला, और यही है टीम इंडिया की असली ताकत। एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम मिलकर जीत की कहानी लिखती है। तो आज सिर्फ इस ट्रॉफी के लिए नहीं, उन बेटियों के लिए भी जो मैदान पर उतर कर नई पीढ़ी से कह रही है, सपने बड़े रखिए, मेहनत पूरी कीजिए, क्योंकि जब हौसला बुलंद हो तो जीत सिर्फ मंजिल नहीं अपनी पहचान बन जाती है। टीम इंडिया, बहुत बहुत बधाई आपको। यही जज्बा, यही जुनून और यही जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहे।

अभी हम सुन रहे थे हेमा सरदेसाई को, फिल्म थी चक दे इंडिया। और दोस्तों आज हिंदी दिवस है और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महिला लेखिकाओं का योगदान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो आज हम बात करते हैं ऐसी ही महान लेखिकाओं की जिनकी कलम ने साहित्य के साथ साथ समाज को भी नई दृष्टि दी। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा, छायावाद की प्रमुख कवियत्री महादेवी वर्मा ने कविता के साथ साथ गद्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यामा, नीरजा उनकी चर्चित कृतियां हैं। इसके बाद नाम आता है सुभद्रा कुमारी चौहान का, उनकी कविता झांसी की रानी ने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और वीरता को जन जन तक पहुंचाया। मुकुल उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, उनकी लेखनी में राष्ट्र प्रेम, साहस और सामाजिक चेतना का अद्भुत मेल दिखाई देता है। कृष्णा सोबती ने हिंदी कथा साहित्य को अपने विशिष्ट भाषा और जीवंत पात्रों से समृद्ध किया। मनु भंडारी का नाम हिंदी कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बंडी, महाभोज और एक इंच मुस्कान जैसी रचनाओं में उन्होंने परिवार, रिश्तों, राजनीति और सामाजिक बदलाव को बेहद मानवीय दृष्टि से प्रस्तुत किया। शिवानी यानी गौरव पंत ने अपनी सहज और प्रभावशाली भाषा में भारतीय परिवार, समाज और स्त्री जीवन की अनेक परतों को सामने रखा। कृष्णकली, 14 फेरे और भैरवी उनकी चर्चित रचनाएं हैं। और इस सूची में मृदुला गर्ग का नाम भी बहुत जरूरी है। चितकोबरा, कठगुलाब और अनित्य जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने बदलते सामाजिक परिवेश, स्त्री जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विषयों को साहित्य में जगह दी। तो इन सभी लेखिकाओं की लेखन शैली अलग थी, उनके अनुभव अलग थे और उनके विषय भी अलग थे, लेकिन एक बात समान थी दोस्तों कि इनकी कलम ने अपने समय को दर्ज किया और पाठकों को समाज को नए नजरिए से देखने का अवसर दिया।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म तीन देवियां से। और आज है विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के स्वागत का दिन और गणपति बप्पा को मोदक प्रिय है, तो आज बात हो जाए ऐसे मोदक की जो टेस्टी भी और हेल्दी भी है। तो कहते हैं त्योहारों की मिठास सिर्फ स्वाद में नहीं, उसमें छिपी यादों और परंपराओं में होती है। लेकिन आज की रसोई में हम उसी परंपरा को थोड़ा सा नया ट्विस्ट दे सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हेल्दी ओट्स नारियल मोदक। इसके लिए चाहिए ओट्स, ताजा नारियल, थोड़ा सा गुड़, मुट्ठी भर मेवे और इलायची। चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा रागी का आटा भी मिला सकते हैं, जिसमें स्वाद के साथ साथ फाइबर भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले ओट्स को हल्का सा भूनकर पीस लीजिए। अब एक पैन में थोड़ा सा नारियल और गुड़ डालकर धीमी आंच पर पकाइए। इसमें कटे हुए बादाम, काजू और इलायची भी डालिए। ये तैयार हो गया मोदक का जो फिलिंग है। अब ओट्स और थोड़ा सा रागी लेकर उसमें गर्म पानी की मदद से नरम आटा गूंथिए। इसमें छोटी छोटी लोइयां बनाकर हथेली पर फैलाइए। बीच में नारियल गुड़ की फिलिंग रखिए और मोदक को एक आकार दीजिए। अगर आपके पास मोदक का सांचा है तो काम और भी आसान। इन मोदकों को भाप में पकाइए लगभग 10 से 12 मिनट तक। बस तैयार है हमारे सॉफ्ट, खुशबूदार, स्वादिष्ट हेल्दी मोदक। और एक छोटी सी बात, हेल्दी का मतलब ये नहीं कि त्योहारों में मिठास ही खत्म कर दें। मात्रा का ध्यान रखें, सामग्री थोड़ी सी समझदारी से चुनें और परंपरा का स्वाद जरूर बनाए रखें।

अब ये हम सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को फिल्म सीता गीता से। और त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में रंग बढ़ जाते हैं, साड़ियों की चमक, कुर्तों के रंग, गहनों की खनक और घर सजाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस बार त्योहारों की खरीदारी में एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। खरीदारी हो खूबसूरत भी, समझदारी भरी भी और पर्यावरण के लिए थोड़ी बेहतर भी। तो सबसे पहले बात कपड़ों की। हर त्योहार पर नया पहनना जरूरी नहीं है। अपनी अलमारी में रखी साड़ी को नया ब्लाउज देकर, किसी कुर्ते को नए दुपट्टे के साथ या माँ की साड़ी को कंटेम्प्ररी अंदाज में पहनकर आप बिल्कुल नया फेस्टिव लुक बना सकते हैं। और अगर खरीदारी करनी ही है तो हथकरघा, खादी, कॉटन, चंदेरी, महेश्वरी या दूसरे पारंपरिक भारतीय वस्त्रों को चुनना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इससे हमारा ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है, वो भी आगे बढ़ता है, कपड़ों में एक अलग पहचान भी आती है। अब बात बजट की। त्योहारों की खुशी शॉपिंग बैग्स की संख्या से नहीं, उन चीजों से तय होती है जिन्हें हम सच में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खरीदारी की छोटी सी सूची बना लें। पहले ही पसंद आया तो खरीद लिया की जगह क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है वाला सवाल काफी पैसे बचा सकता है। तो इस फेस्टिव सीजन एक खूबसूरत कोशिश क्यों ना करें, कम खरीदें, सोच समझ कर खरीदें, भारतीय कला और कारीगर को चुनें और ऐसी चीजें घर लाएं जिनकी खूबसूरती त्योहार खत्म होने के बाद भी बनी रहे। क्योंकि असली फेस्टिव शॉपिंग वही है जिसमें खुशी घर तक आए लेकिन उसका बोझ हमारी जेब और पर्यावरण पर ना पड़े। खुशियां खरीदने के लिए बड़ी कीमत नहीं चाहिए, बस पसंद में थोड़ी समझदारी और दिल में थोड़ी सादगी चाहिए।

खूबसूरत रंगों और शुभकामनाओं के साथ आज का सफर यहीं तक। हरतालिका तीज आपके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। बप्पा आपके घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि भरे। इसी के साथ दीजिए मंजुला को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्य देशों का आभार व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के विशेष क्षणों को दर्शाने वाला एक वीडियो प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया गया है। वीडियो में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के माध्यम से भारत ने विश्व स्तर पर मित्रता, साझेदारी और सहयोग को आगे बढ़ाया है। श्री मोदी ने कहा कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा दृष्टिकोण और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है। हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 सदस्य देशों और 10 भागीदार देशों के नेताओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनॉम घेब्रेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स की विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्य खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के तौर पर अपनाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत में कई भाषाओं का होना देश की सबसे बड़ी ताकत है। हिंदी दिवस पर एक वीडियो संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा किसी दूसरी भाषा की प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की

0: भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Union Home Minister Amit Shah has said the presence of multiple languages in India is the biggest strength of the country. Sharing a video message on Hindi Divas today, he said, Hindi language is not the competitive language of any other language, but an important connecting thread of national unity.
0: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
2: Hindi Divas is being celebrated across the country today. It was on this day in 1949 that the Constituent Assembly adopted Hindi, written in Devanagari script, as the official language of the country. Home Minister Amit Shah has said BJP-led NDA governments in 21 states will introduce Uniform Civil Code, UCC, before 2029. Speaking to reporters in Mumbai, the Home Minister said UCC has been introduced in several states, and he is confident that it will be introduced in the 21 BJP NDA ruled states before 2029. Mr. Shah said triple talaq has been abolished, giving Muslim women equal rights. He said the government has strengthened the country's criminal justice system through the Bharatiya Nyaya Sanhita and claimed that several states have recorded a 30% increase in the conviction rate in a single year. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to the leaders of all the BRICS member countries for making the Delhi summit of the grouping productive and outcome-oriented. A video reflecting key moments of the two-day summit was posted on the social media handles of the Prime Minister. In the video, a part of the Prime Minister's summit speech was shown where he said, through BRICS, India has advanced friendship, partnership and cooperation all across. India hosted the BRICS summit on the 12th and 13th of this month, and it was attended by the leaders of the 11 member countries and 10 partner countries of the grouping, besides some international organizations. Mr. Modi also held 15 sit-down bilateral meetings with heads of states or heads of government in the last 3 days on the sidelines of the summit. The government has said the security situation in Jammu and Kashmir remains firmly under control due to the relentless efforts of the army. In its latest annual report 2025-26, the Defence Ministry said these efforts have led to a significant decline in violence, a reduction in protests, and zero incidents of stone pelting. According to the report, the situation within Jammu and Kashmir and along the line of control had significantly altered during Operation Sindoor. The festival of Ganesh Chaturthi is being celebrated today across the country with great devotion. The day marks the birth of Lord Ganesh, a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have extended their greetings to the people on the occasion of Ganesh Chaturthi. The Indian Meteorological Department has issued an orange colour warning for very heavy rain.

0: rainfall over Gujarat for the day. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Punjab, East Rajasthan, Odisha and Bihar till tomorrow. Similar weather conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya during the next 2 days. State Minister for Foreign Affairs Humayun Kabir has said Bangladesh wants to move towards a new relationship with India through bilateral discussions rather than multilateral forums. Speaking to reporters at the Ministry of Foreign Affairs in Dhaka, Mr. Kabir said Bangladesh needs to move beyond what he described as an excessive preoccupation with India and deal with New Delhi on the basis of mutual interests. World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus has called for stronger health cooperation, innovation, resilience and sustainable financing. In a social media post, Dr. Tedros said the four themes of the BRICS Leaders Summit are directly relevant to global health. In tennis, Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open, beating American Ben Shelton in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. And with that, we end this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त दोपहर के 1:10 और 18 सेकंड, और ये वक्त है आपके उस खूबसूरत से प्रोग्राम का जिसका रहता है आपको हर रोज इंतजार, प्रोग्राम एक ही फिल्म से. प्रोग्राम शुरू करूँ उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ.
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले. आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे.
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे.
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में.
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं. काट दिया.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे.
6: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए. प्रोग्राम एक ही फिल्म लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे, और आज मैं आपको लिए चलूंगी 1967 किस दौर में, जब बॉलीवुड में सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री का एक नया दौर शुरू हो रहा था. आज हम बात करेंगे निर्देशक सूरज प्रकाश की एक सुपरहिट सस्पेंस से भरी फिल्म, थ्रिलर वाली फिल्म, जिसमें एक ऐसा ड्रामा था जो लास्ट तक एंड तक फिल्म के आपको बांधे रखता है. एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री जिसने दर्शकों को आखिरी सीन तक इस तरीके से उत्सुकता बनाए रखा कि वो एक पल के लिए भी उठने का नाम नहीं लिए. बहुत खूबसूरत सी इसमें कास्ट थी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, तो आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे कि आज हम आपके लिए कौन सी फिल्म लेकर आए हैं. और अब अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो फिर क्या करना है आपको, अपने जवाब मेल के जरिए पहुंचाना है हम तक. और मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com. ये वो रास्ता है जिसके जरिए आप मेरे इस प्रोग्राम के हम सफर बन सकते हैं. तो फिलहाल सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत और उसके बाद आपको बताएंगे कि आज पिटारे में कौन सी फिल्म छुपी हुई है जो कि 1967 में रिलीज हुई थी.

और आप सबका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने फिल्म का सही नाम लिखकर हम तक पहुंचाया है। ढेर सारे संदेश आपके सही जवाब के साथ हम तक पहुंच गए हैं और आप हमारे हमसफर भी बन गए हैं, इसके लिए भी हम आपको शुक्रिया कहते हैं जी। तो आज हम आपके लिए चुनकर लेकर आए हैं 1967 की फिल्म आमने सामने। एक

फिल्म जिसमें सच और झूठ, भरोसा और शक, प्यार और रहस्य सब आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। इस फिल्म का निर्देशन किया था सूरज प्रकाश ने और निर्माता भी सूरज प्रकाश ही थे। मुख्य कलाकार में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, मदन पुरी, राजेंद्र नाथ, कमल कपूर, करण दीवान और शमी जी नजर आए थे। संगीत जो आप सुन रहे हैं, इतना खूबसूरत अंदाजा आपने लगा ही लिया होगा, ये संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने और जो गीत हैं उसके बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। 2 घंटे 43 मिनट की अवधि वाली ये सुपरहिट फिल्म जिसने एक ऐसे कहानी को दर्शकों के सामने पेश किया, ऐसी कहानी से दर्शकों को बांधे रखा जिसे आज भी लोग याद करते हैं। इसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं।

लता और रफी साहब की आवाज में ये सुपरहिट सॉन्ग फिल्म आमने सामने। कहानी का केंद्र है दीपक वर्मा, जिसका किरदार निभाया है शशि कपूर ने। दीपक पर अपनी अमीर पत्नी की हत्या का आरोप लगता है, अदालत में मुकदमा चलता है, लेकिन पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण वो बरी हो जाता है। इसके बाद दीपक अपनी पुरानी पहचान से दूर होकर गोपाल मित्तल के नाम से मुंबई में नई जिंदगी शुरू करता है और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। उसकी मुलाकात होती है खूबसूरत और अमीर लड़की सपना से, जिसका किरदार शर्मिला टैगोर ने निभाया है। शुरुआत में तो सपना को गोपाल बिल्कुल पसंद नहीं आता, उसे लगता है कि गोपाल उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती हैं और दोनों के बीच प्रेम पनपने लगता है। सपना का परिवार चाहता है कि उसकी शादी प्रेम से हो, जो किरदार प्रेम चोपड़ा ने निभाया है, लेकिन सपना अपने दिल की सुनती है और गोपाल को चुनती है। दोनों शादी कर लेते हैं। सुनने में तो आपको यहाँ तक एक सामान्य प्रेम कहानी जैसी लग रही होगी, लेकिन आमने सामने की असली कहानी तो शादी के बाद ही शुरू होती है। हनीमून के दौरान सपना की जान लेने की कोशिश होती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सपना को कौन मारना चाहता है, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या गोपाल सचमुच वही व्यक्ति है जो वो खुद को बताता है। धीरे धीरे सपना को पता चलता है कि उसके पति गोपाल का असली नाम दीपक वर्मा है, और ये वही दीपक है जिस पर अपनी पत्नी, जो पहली पत्नी है, उसकी हत्या का आरोप लग चुका है। अब सपना के मन में अपने ही पति को लेकर डर और शक दोनों पैदा होने लगते हैं। गोपाल का बदलता व्यवहार इस रहस्य को और भी गहरा करता है, और उसके बाद हम और आप यानी कि दर्शक भी सोचने लगते हैं कि क्या दीपक वास्तव में हत्यारा है या फिर कोई और है जो घटनाओं के पीछे से पूरी कहानी चला रहा है, और यही सवाल फिल्म को सस्पेंस से भर देता है। फिल्म आमने सामने।

शशि कपूर उस समय हिंदी सिनेमा में अपनी रोमांटिक और आकर्षक स्क्रीन उपस्थिति के लिए बहुत पसंद किए जाते थे। वहीं शर्मिला टैगोर की खूबसूरती और अभिनय की उनकी जो एक अलग पहचान थी वो दर्शकों को अपनी ओर खींचती थी। आमने सामने फिल्म में दोनों की जोड़ी के साथ कहानी का रहस्य फिल्म को सामान्य रोमांटिक फिल्म से अलग बनाता है। शशि कपूर ने एक ही किरदार के दो नामों यानी कि दीपक वर्मा और गोपाल मित्तल के जरिए कहानी के रहस्य को संभाला, जबकि शर्मिला टैगोर का किरदार सपना धीरे धीरे प्रेम के शक और फिर डर की ओर बढ़ता है। अब हम यहाँ पर एक कैरेक्टर को और याद करना चाहेंगे, वो है प्रेम चोपड़ा, जिन्होंने प्रेम मल्होत्रा की भूमिका निभाई थी। उनके किरदार की मौजूदगी कहानी में एक और कोड जोड़ती है, खासकर तब जब सपना गोपाल को चुनती है और परिवार और प्रेम की प्रतिक्रिया कहानी को आगे बढ़ाती है। प्रेम चोपड़ा के करियर में ये वो दौर था जब वे हिंदी फिल्मों में अपनी विशिष्ट नेगेटिव इमेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे, और इन सब के बीच आमने सामने फिल्म में इन हर किरदार ने अपने अपने किरदार को बखूबी निभाया। आमने सामने फिल्म की सबसे बड़ी खूबी थी उसका रहस्य बनाए रखना। कहानी लगातार दर्शकों के मन में सवाल पैदा करती थी कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, गोपाल कौन है, दीपक का अतीत क्या है, सपना पर हमला कौन कर रहा है। यानी फिल्म का शीर्षक सिर्फ दो लोगों के आमने सामने की बात नहीं करता, बल्कि कहानी में कई तरीके के विरोधाभासों को भी सामने लाता है। आपके ढेर सारे संदेश भी हम तक पहुंच गए हैं, बस कुछ ही देर में उन संदेशों को भी मैं शामिल करने जा रही हूं।

अजीत भास्कर जी, प्रमिला भास्कर, वीरनगांव गुजरात से ढेर सारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राविया शेख रहीम मुन्ना जी हमारे साथ हैं। चंडीगढ़ से सतीश शनीजा, बिमला अनेजा हमारे

साथ जुड़े हैं। दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता सी आर कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर जी हमारे साथ पिंगावाला चौक जालंधर से जुड़े हुए हैं। और ये संदेश पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह पल्लवी जी का आया है। गांव लोहागढ़ ठाकुरवाला से सोन सिंह गिल, दलजीत राजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद जी पलारी छत्तीसगढ़ से हमें सुन रहे हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता और डिम्पल जी हमारे साथ हैं। प्रकाश वर्मा प्रिंस जी पलारी से हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। और तहसील वरुण जिला अमरावती महाराष्ट्र से मुकेश कासलेकर जी हमारे साथ हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगरेजा पूनम जी हमें सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से, शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल हमारे साथ हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम जी हमें सुन रहे हैं। देवशंकर तामुरी, अजय देव, तुषार जी डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। शिवा गो प्रेम गोप पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से हमें सुन रहे हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी, निगत परवीन शनवास, सरफराज फरदीन और परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी जी हमारे साथ हैं। और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से हैं। अगला संदेश अजीत भापसर जी का ही एक और पहुंचा है। भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल पूजा है हमारे साथ। और ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा बेरड़ी नाना जी तामसे, मीना तामसे जी हमें हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हीरावणी वर्मा दतरंगी भाटा पारा से हमारे साथ हैं। गांव नागरकोरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जामुन देवी प्रेम पूजा बेबी आराध्या हमारे साथ हैं। अगला संदेश देवनारायण साहू, योगिता चुलबुली, गीता जी भोईना पार बालोद छत्तीसगढ़ से आया है। सुरेंद्र खुराना जी न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। अगला संदेश हमारे पास बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन अपार डिंगिया का आया है, आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से उषा मोहन चिल्लू नायक, मधु नायक जी हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश नलवेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर निर्मला विशाल जी का आया है। फारूक अली खान जी हमें हमारे साथ हैं। और गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी का एक और संदेश है। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी है। भूषण खेरा जी हमारे साथ हैं। चर डोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से अजय कुमार जय किशन और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सुरेंद्र खुराना जी निर्मलता नगर दिल्ली से कह रहे हैं कि आज की फिल्म आमने सामने मैंने देखी हुई है और बहुत बेहतरीन फिल्म है, बिल्कुल शुक्रिया आपका। रोहित वशिष्ठ जी हमारे साथ प्रेम नगर प्रेम सागर सुभाष लता जी के साथ अमृतसर से जुड़े हुए हैं। लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे इस हम सफर बनने के लिए, सफर में हम सफर बनने के लिए। और एक और संदेश आया है शिवा गोप जी का पश्चिम सिंहभूम चाईबास झारखंड से, तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत भी है, रहस्य भी है, शक की परछाई भी है, जो कहानी के हर मोड़ पर दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है। तो ये फिल्म हमेशा की तरह यही कहेंगे कि वक्त निकालकर अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। फिलहाल तो वक्त कह रहा है कि आपसे मुझे अनुमति लेनी है, लेकिन 3 बजे आपसे फिर मिलूंगी प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज में। याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, 3 बजे मैचिनी मेलेडीज लेकर एक बार फिर हाजिर होंगी। 2:30 पर प्रोग्राम रहेगा, एक ही कलाकार शिल्पा जी आपके साथ रहेंगी। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: खबर उस तो बाद मिलेंगे 2 प्रोग्राम लेके दोबारा।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे।
1: इसी तरह लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी हिंदी दिवस उत्ते देशवासियों को शुभकामनाएं दी ने। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी ने। अज देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और उत्साह मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश का जन्म का प्रतीक है जिन्होंने बुद्धि खुशहाली और खुशकिस्मती का देवता मनिया जाता है। इसनों विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव वजों भी जाना जाता है। अज इस 10 रोजा त्यौहार का पहला दिन है जिस दौरान लोग अपने घर में भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने सुनेहे विच राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश बुद्धि खुशहाली और शुभ शुरुआत के प्रतीक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अज गणेश चतुर्थी के मौके पर देशवासियों को निघियां वधाइया दित्तियां ने। बंगलादेश के विदेश राज मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत नाल संबंधां नूं दुवल्ली गलबात राही अगे वधाउणा चाहुंदा है। ढाका विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि बंगलादेश नूं भारत नाल आपसी हितां दे आधार उत्ते नवें सिरे तों काम करना चाहीदा है। भारत बंगलादेश सरहद नाल संबंधित हालिया मामलों बारे श्री कबीर ने कहा कि इन मुद्दों का हल अंतरराष्ट्रीय कानून, सरहदी प्रोटोकॉल और दुवल्ले समझौतों तहत कूटनीतिक गलबात राही किया जाएगा। मौसम विभाग ने अज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र तो इलावा गुजरात में भारी मीह पैण की पेशगोई की है। उत्तर पूर्वी राज्यों खासकर अरुणाचल प्रदेश, असाम और मेघालय में भी इसे तरह का मौसम बनिया रह सकता है। इवें ही उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा और अंडमान निकोबार टापू समूह में अज गरज चमक नाल बिजली लिशकन की संभावना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने न्यूयॉर्क में अमरीका के बेन शेल्टन नूं हरा के यूएस ओपन पुरश सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। यह 2026 विच ज्वेरेव का दूजा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इस तो पहला उन्होंने जून विच फ्रेंच ओपन का खिताब जितया सी। क्रिकेट विच भारत ने महिला एशिया कप 2026 जीत लिया है। कल खेडे गए फाइनल विच भारतीय टीम ने श्रीलंका नूं 72 दौड़ां नाल हरा के 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नां कीता। ओपनर शैफाली वर्मा और समृति मंदाना दरमियान 129 दौड़ां दी रिकॉर्ड साझेदारी की बदौलत भारत ने 5 विकटां दे नुकसान उत्ते 183 दौड़ां बनाईआं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम के सारे मैंबरां नूं महिला 2020 एशिया कप जित्तण ते वधाई दित्ती है। बुलेटिन दीआं खास खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नूं सफल ते नतीजा मुखी बनाउण लई सारे मैंबर देशां दे नेतावां दा धन्नवाद कीता है। सरकार ने कहा है कि साल 2020 तो बाद 9 राज्यों में 147 कोला ब्लाकों की नीलामी की गई है। अज देश भर में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अज पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी मीह पैण की पेशीनगोई की है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन नूं हरा के यूएस ओपन पुरश सिंगल का खिताब जीत लिया है। इहदे नाल ही साडा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 से होगा। नमस्कार,
2: आदाब। ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में नुमाया कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर की सिक्योरिटी सूरतहाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद देते हुए जनाब शाह ने कहा कि भारत लिसानी और सकाफती यगानिगत की सरजमीन है और जोर

0: Chaturthi being celebrated across the country today with great devotion, pomp and gaiety. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अनुमान। देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करके और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह को बरकरार रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान लोगों के विकास और ग्लोबल साउथ के हितों को विशेष महत्व दिया। इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि सम्मेलन के पहले ही दिन सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना था। पश्चिम एशिया की स्थिति पर ब्रिक्स नेताओं ने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से समस्या का समाधान करने की अपील की। वहीं आम लोगों और नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा की आवश्यकता पर भी दिया गया। इसके अलावा सभी नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने पर भी सहमति बनी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत छाप छोड़ी है। श्री सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा पत्र भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का प्रमाण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय सीधे तौर पर वैश्विक स्वास्थ्य से जुड़ा था। उन्होंने देशों से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निगरानी, चेतावनी प्रणाली और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने का आग्रह किया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने त्रिकुरल के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को त्रिकुरल के रूसी अनुवाद की प्रति भेंट करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया। विदेश मंत्रालय ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन में सहयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी विभागों और एजेंसियों का आभार व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उन सभी राज्य सरकारों का भी धन्यवाद किया जिन्होंने ब्रिक्स के विभिन्न बैठकों की मेजबानी की। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन जटिल कार्य था जिसके लिए सरकार और देश के सभी स्तरों पर समन्वित प्रयास जरूरी थे। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली में सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि सेना के अथक प्रयासों के चलते जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 में कहा है कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हिंसा में

0: उल्लेखनीय कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों में भी गिरावट आई है और पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई है। रिपोर्ट में चीन के साथ समग्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बलों की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। वास्तविक नियंत्रण रेखा LSE और पारंपरिक प्रशिक्षण क्षेत्रों में 10 संयुक्त शस्त्र ब्रिगेड के आकार के बल तैनात किए गए हैं। भारत और चीन के बीच राजनीतिक, राजनयिक और सैन्य स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत से उत्तरी सीमाओं पर सकारात्मक विकास हुआ है, जिससे स्थिरता आई है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ संबंधों को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है। ढाका में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ आपसी हितों के आधार पर नए सिरे से काम करना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े हाल के मामलों पर श्री कबीर ने कहा कि बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमा संबंधी नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के तहत कूटनीतिक बातचीत से मुद्दों का समाधान करेगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 6वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान राजभाषा गौरव और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 प्रदान किए। श्री शाह ने हिंदी दिवस के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया।
1: हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकन अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मनपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ।
0: गृहमंत्री ने वंदे मातरम को देश का गौरव बताया।
1: वंदे मातरम की उद्घोषणा के साथ न केवल आजादी की उत्कंठता को, आजादी प्राप्त करने की तीव्र भावना को जागृत किया, इसके साथ साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव डालने का काम भी बंकिम चंद्र जी ने किया था। आजादी के बाद भी इसको पूर्ण स्वरूप से स्वीकार करते करते 80 साल हो गए। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जिन्होंने वंदे मातरम को फिर से एक बार पूर्ण स्वरूप गौरव के साथ सरकारी समारोह में गाने का काम किया।
0: दो दिन के अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से नवी मुंबई में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंदी और महाराष्ट्र के समृद्ध भाषाई, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक परंपराओं के बीच संबंध को उजागर करना है। सम्मेलन में विभिन्न संस्थानों, संगठनों, बैंकों और मंत्रालयों की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखे हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहली भाषा है।
2: हिंदी दिवस वो दिन है जब हम सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उस भाव को नमन करते हैं जो हमें शब्दों के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ता है। संत कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारे संस्कारों की भी पहचान है। हिंदी ने सदियों से भावनाओं को शब्द दिए हैं। भाषा का वास्तविक गौरव तभी है जब वो ज्ञान को सबके लिए सहज बनाए और समाज को जोड़े। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटत नहिय को सूल। इस हिंदी दिवस पर आइए हिंदी को केवल सिर्फ एक दिन के रूप में न याद करें, बल्कि इसे बोलें, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ाएं। साथ ही दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें, क्योंकि भाषा में जितनी स्वीकार्यता होगी वो उतनी ही आगे बढ़ेगी। आकाशवाणी की ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और जीवन मूल्यों की सशक्त अभिव्यक्ति है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2020 के बाद से 9 राज्य में 147 कोयला खंडों की नीलामी की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि इससे लगभग 47,500 करोड़ रुपए का राजस्व और 4,90,000 नौकरियां सृजित होने का अनुमान है।

0: ये भी बताया कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित वाणिज्यिक खदानों से लगभग 3,090 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। भारत के विद्युत मंत्रालय ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को 13 सितंबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। हाल ही में आई बाढ़ से नेपाल के जल विद्युत अवसंरचना को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे नेपाल के घरेलू बिजली उत्पादन क्षमता में कमी आई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता उत्पन्न हुई है। राजस्थान में 309 शहरी स्थानीय निकायों के लिए हुए चुनावों की वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। राज्य के 10 नगर निगमों में से भाजपा जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर सहित 6 में आगे है, जबकि कांग्रेस पाली और बीकानेर में बढ़त बनाए हुए है। भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार भूमि मालिकों की जानकारी के बिना किए जाने वाले फर्जी भूमि पंजीकरणों को रोकने के लिए एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली शुरू कर रही है। यह संपत्ति पंजीकरण को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। केंद्रीय विद्युत और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ऊर्जा प्रचुरता पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक 14 से 16 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के अनेक जिलों में आज तेज बारिश और आंधी तूफान की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड़ इन 5 तटीय और अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कच्छ, जामनगर, देवभूमि द्वारका, राजकोट, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, अमरेली, भावनगर और सूरत समेत 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट प्रभावी है। इन दौरान 41 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। वहीं राज्य में मानसून की नई बारिश से फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे किसानों में खुशी की लहर छाई है। राज्य के 35 बांध अपनी पूरी क्षमता से भरने के कारण हाई अलर्ट पर है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा और बिहार में भी तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक बारिश जारी रह सकती है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन भगवान गणेश के जन्म का प्रतीक है, जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में भगवान गणेश की पूजा की।
2: गणेश चतुर्थी की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री गणेश सबके जीवन में हमेशा शुभ करें, हर व्यक्ति के जीवन में खुशी, उत्साह, उत्सव रहे, इसकी कामना करता हूं। भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद बना रहे।
0: गणेश चतुर्थी की वजह से आज घरेलू शेयर बाजार बंद है। कमोडिटी बाजार में आज सुबह के सत्र में कोई कामकाज नहीं हुआ, लेकिन शाम 5 बजे से कारोबार फिर शुरू हो जाएगा। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल्स खिताब जीत लिया है। फाइनल में ज्वेरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराया। ये 2026 में ज्वेरेव का दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले उन्होंने जून में फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। भारत ने T20 महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल भारतीय टीम ने श्रीलंका को 72 रन से हराकर 8वीं बार एशिया कप अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा को आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की महत्वपूर्ण नींव बताया। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने पर आगाह किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा, देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 2025 में चीनी सेना की तैनाती में उल्लेखनीय कमी देखी गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति स्थिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की भाषाई विविधता अनेकता के बीच एकता को मजबूत करती है। गृहमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी दी। गुजरात के अनेक जिलों में आज आंधी तूफान के

0: साथ तेज बारिश का अनुमान और देश भर में आज गणेश चतुर्थी पर श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 684 किलोहर्ट्स, FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेशे खदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। स्वागत है बहुत बहुत आज के उमंग कार्यक्रम में। सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। अच्छे स्वभाव और व्यवहार वाले लोगों की जगह इस दुनिया में प्राणवायु फैलाने वाले हरे वृक्षों जैसी होती है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और दीपांजलि पटेल के साथ दीपक पटेल, टेकलाल पटेल जी लिखते हैं। विमलेश जी, अजीत जी नमस्कार। 19 अगस्त को सुनने को मिला नदी का सफर, हमें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा लगा। उसके लिए उमंग टीम को हम हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ज्ञान का खजाना है उमंग कार्यक्रम। भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने लिखा है नमस्कार। ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत हमारी प्रिय हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को जान सके जिनको सर्वसम्मति से पूरा विश्व ये मान्यता प्रदान करता है कि इन शब्दों की उत्पत्ति भारतीय है। जंगल, शैम्पू, पायजामा और अगले अंक में बंगला, खाकी, लूट, योग, गुरु शब्दों की मूल उत्पत्ति पर गहन साहित्यिक मालूमात हासिल हुई। कुछ दिनों पहले कुछ हिंदी शब्दों के अर्थ भी बताए गए थे, उसके लिए हम पूरी उमंग टीम का आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल, बेंगलुरु से जगदम्बिका और हमसा वेनी, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये और राधिका गजभिये, रेडमा डाल्टनगंज पलामू झारखंड से मिंटू दुबे, दिशानी दुबे, किसले और आनंद के साथ साथ प्रीति दुबे। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। हमारा पहला प्रश्न था, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है साथियों, साइकिल का आविष्कार जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल ड्राइस ने किया था। हमारा दूसरा प्रश्न था, महान पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर विजय कब प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं, उन्होंने 21 मई 2013 को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया और माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली दिव्यांग महिला बनने का असाधारण गौरव प्राप्त किया। और हमने अगला प्रश्न पूछा था, दृढ़ संकल्प के धनी दशरथ मांझी जी को पहाड़ खोदकर रास्ता बनाने में कितना समय लगा? इसका उत्तर है, उन्हें कुल 22 वर्षों का समय लगा। और हमारा अगला प्रश्न था, देश के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में शहीद हुए तीन युवा क्रांतिकारियों के नाम बताइए। उन शहीदों का नाम था विनोय बसु, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता। हमारा अंतिम प्रश्न था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के पिताजी का नाम था ठाकुरदास बंदोपाध्याय। तो ये थे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के उस फल का नाम बताइए जिसे मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं

0: तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है बैंगनी जोजो, कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित। ये कार्यक्रम एक प्यारे डॉगी के बारे में बताता है जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, और जब वो उठा तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। पर क्यों, आइए जानते हैं इस कार्यक्रम से।
1: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
1: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
2: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
1: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
2: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो पीला हूं।
2: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
4: गुब्बारे गुब्बारे,
2: क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो लाल हूं।
2: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
5: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
1: बेचारा जोजो।
2: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
6: आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
7: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए।
0: बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
2: इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम मारिया मोंटेसरी। इस कार्यक्रम में विश्व की महान शिक्षाविद, चिंतक और शिक्षिका मादाम मारिया मोंटेसरी के जीवन और शैक्षिक जगत में उनके अमूल्य योगदान के बारे में विस्तार से बताया गया है।
3: शिक्षा का उद्देश्य मात्र तथ्यों को सीखना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना होता है। ये कथन है 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन का।
4: आज हम बात करेंगे एक महान विलक्षण स्त्री की, जिसने बाल मनों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षा शास्त्र को एक नया आयाम दिया और शिक्षण प्रणाली में सुखद और क्रांतिकारी परिवर्तन का सूत्रपात किया।
3: उनका नाम है मारिया मोंटेसरी। वो इटालियन चिकित्सक और शिक्षाविद थी। मैडम मारिया मोंटेसरी को क्रिया प्रधान मनोवैज्ञानिक शिक्षण एवं खेल आधारित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति के विकास का श्रेय दिया जाता है।
4: उनका पूरा नाम था मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी। मारिया का जन्म 31 अगस्त 1870 को चेरा वाले इटली के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम एलेसेंड्रो मोंटेसरी था, जो इतालवी सरकार के वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
3: उनकी माँ का नाम रेनिल्ड स्ट्रोपानी था, जो बहुत ही सभ्रांत और सुशिक्षित घराने से आती थी। मारिया के जीवन पर उनकी विदुषी माता का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जो जीवन भर उनके साथ रहा।
4: जब वो मात्र 4 वर्ष की थी, उनका परिवार चेरा वाले से रोम आ गया। 6 वर्ष की आयु में मारिया ने स्थानीय राज्य पोषित विद्यालय में दाखिला लिया। वो बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी।
3: उनके विद्यालय में सह शिक्षा थी। उन दिनों सामाजिक मान्यताओं के कारण ये स्वीकार करना आसान नहीं था कि लड़कियां लड़कों से अच्छा कर सकती हैं।
4: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 1886 में रेजियो इंस्टीट्यूटो टेक्निको लियोनार्डो दा विंची नामक तकनीकी स्कूल में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग

0: की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का मन बनाया। सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण उन्हें बहुत हतोत्साहित किया गया
1: और आखिर आ ही गया 10 जुलाई 1896 का वो गौरवशाली दिन।
2: साथियों, आज का दिन रोम विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक दिन है। हम बहुत हर्ष के साथ सूचित करते हैं कि मादाम मारिया टेकला आर्टेमिसिया मोंटेसरी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ मास्टर ऑफ साइंस इन मेडिसिन की उपाधि प्राप्त करके इटली की पहली महिला डॉक्टर बनने का गौरव प्राप्त किया।
3: बधाई
4: हो, धन्यवाद,
0: बहुत बहुत बधाई,
4: धन्यवाद।
0: इटली की पहली महिला डॉक्टर, भाई वाह, कमाल है,
3: बहुत बहुत बधाई हो।
0: अठारह सौ सत्तानवे में वो रोम विश्वविद्यालय के मनोरोग क्लिनिक द्वारा संचालित एक शोध कार्यक्रम में शामिल हुई और इस शोध कार्यक्रम के तहत वो रोम शहर और आसपास के पिछड़े इलाकों में बने बाल गृहों का दौरा करने लगी।
1: इन बाल गृहों में सामान्य बच्चों के साथ साथ आंशिक रूप से दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर बाधित और कुछ कुछ बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चे भी शामिल थे। इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने उनके सोचने के तरीके में एक नया आयाम जोड़ दिया। एक दिन वो एक बाल गृह पहुंची। मिस्टर गैब्रियल उस बाल गृह की देखभाल करते थे।
5: आइए मारिया जी।
4: कैसे हो गैब्रियल, कैसा चल रहा है यहाँ?
5: जी
4: आप कुछ उदास लग रहे हो।
5: जी मैडम, अब आपको क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि इन दिव्यांग बच्चों की हालत दिन ब दिन और बुरी होती जा रही है।
4: और बुरी?
5: जी।
4: अब भला वो कैसे?
5: आज दोपहर के भोजन के बाद आप बच्चों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण कीजिएगा।
4: हाँ हाँ जरूर।
5: जी
1: बच्चों की कक्षा का समय समाप्त हुआ और दोपहर के भोजन का समय हो गया। भोजन के बाद बच्चों को कुछ समय का अवकाश दिया जाता था। मारिया ने देखा कि भोजन के बाद कुछ बच्चों ने अपने बर्तनों को, भोजन की मेज की खुरदरी सतह को, खिड़कियों की जालियों को छूना और टटोलना शुरू किया।
5: देखा आपने मारिया जी, क्या ये असामान्य नहीं है? जब ये बच्चे छोटे थे तो इनकी इस तरह की गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन अब तो देखिए देखिए कुछ बच्चे बाहर जा रहे हैं। अभी वो सड़क के गिट्टियों से खेलेंगे। वो देखिए, वो बच्चा टूटी हुई दीवार से निकली ईंटों पर उंगलियां फेर रहा है। देखिए देखिए।
4: नहीं नहीं गैब्रियल, मुझे लगता है कि यह सामान्य नहीं है।
1: बाल गृह से बाहर आकर लौटते समय रास्ते में वो सोच रही थी,
6: शायद ये बच्चे चीजों को इसलिए बार बार छूते हैं क्योंकि उन्हें संवेदी उत्तेजना चाहिए, लेकिन ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा करके शायद वो सीखना चाहते हैं, वो अवलोकन और निरीक्षण करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनके सीखने सिखाने का एक नया रास्ता मुझे मिल गया है।
0: उन्होंने इस विषय पर गहरा अध्ययन किया और इस विषय पर अन्य शिक्षाविदों के विचार जाने। उन्होंने सीखने के प्रतिफल विषय पर जितना संभव

0: हो सके पढ़ना शुरू किया और विशेष रूप से उन्होंने 19वीं शताब्दी के शुरुआती फ्रांसीसी शिक्षाविद एवं बाल शिक्षा विशेषज्ञ एडवर्ड सेगुइन के अभूतपूर्व काम का 2 वर्षों तक गंभीर अध्ययन किया।
1: उन्होंने लोम्ब्रोसो और सर्गी जैसे विचारकों द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि की भी जानकारी प्राप्त की।
2: हाँ, मैंने अब महसूस कर लिया है कि इन बच्चों की बहुत सी समस्याओं का निदान चिकित्सा और दवा से अधिक शिक्षण विधि में निहित है। क्यों ना उनके लिए ऐसे खिलौनों और पाठ्यचर्या का विकास किया जाए जो उनकी संवेदना को उत्तेजित करे और उनमें उत्सुकता जगाए। खिलौनों को यदि एक समस्या की तरह उन्हें दे दिया जाए तो वो खिलौना ही उनका समाधान बन जाएगा।
1: बस फिर क्या था, उन्होंने बौद्धिक रूप से दिव्यांग और अन्य बाधित बच्चों की संवेदी धारणाओं और मोटर कौशल को विकसित करने में मदद करने के लिए व्यवहारिक उपकरण और खिलौने बनवाए, जिनमें ब्लॉक्स, छिद्रों वाला तख्ता, बीट्स, कंचे, माला, गीली मिट्टी, रंग, विभिन्न अलग अलग आकारों की खुरदरी आकृतियां, वाद्य यंत्र, लकड़ी के जोड़ने वाले ब्लॉक्स और पैटर्न्स वाले खेल मुख्य रूप से शामिल थे।
0: उन्होंने बाल गृहों के रखरखाव पर भी बहुत जोर दिया और सुनिश्चित किया कि इन गृहों के वातावरण को सुसज्जित और साफ सुथरा रखा जाए। दीवारों पर अलग अलग प्रकार की रंग बिरंगी समतल और खुरदरी आकृतियां बनाई जाएं। 6 जनवरी 1907 को कासा देई बम्बिनी यानी चिल्ड्रन हाउस खुला।
1: इन बाल गृहों में 3 से 8 वर्ष के बच्चों को प्रवेश दिया जाता था और शर्त ये थी कि बच्चों को साफ सुथरा बिना पुस्तकों के भेजा जाए। अब सीखने सिखाने के ये बाल गृह लोगों की उत्सुकता और आलोचना का केंद्र बन चुके थे। चाइल्डहुड हाउस के कुछ फर्नीचर ऐसे भी होते थे जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था, इससे मोटर ट्रेनिंग भी हो जाती थी।
0: एक दिन मारिया कक्षा में आई। नव सुसज्जित स्कूल का दृश्य ही अद्भुत था। हर बच्चा अपने अपने कार्य में लगा हुआ था, कोई ज्ञानेंद्रियों तो कोई कर्मेंद्रियों से संबंधित अभ्यास में लगा था, कोई चित्र बना रहा था तो कोई कुछ और कर रहा था। सारा कक्ष रोचक गतिविधियों से भरा हुआ था।
1: ১৯০৮ की शरद ऋतु तक 5 बाल गृहों का संचालन किया गया, 4 रोम में और 1 मिलान में। इन खेल आधारित बाल गृहों में आंशिक रूप से दिव्यांग बच्चों ने असाधारण प्रगति की और जल्द ही 5 साल के इन बच्चों ने लिखना और पढ़ना शुरू कर दिया। मोंटेसरी के इस नए दृष्टिकोण की खबर सारे यूरोप में तेजी से फैल गई। शिक्षाविद और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी और बच्चों के अभिभावक खुद ये देखने के लिए पहुंचे कि वो इस तरह के आश्चर्यजनक परिणाम कैसे प्राप्त कर रहे हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर मारिया, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लगता था कि मेरी बच्ची कभी नहीं सीख पाएगी, लेकिन अब वो लिखने और पढ़ने भी लगी है।
2: धन्यवाद
4: डॉक्टर मारिया, मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आपने असंभव को संभव कर दिखाया। वाह, मुझे धन्यवाद के शब्द नहीं मिल रहे हैं। आपके पढ़ाने का तरीका कमाल है, ये मिसाल है।
2: धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है कि मैंने शिक्षा का कोई नया तरीका इजाद नहीं किया। मैंने तो बस कुछ छोटे बच्चों को उनके अनुसार जीने का मौका दिया है।

0: जी,
1: मैं सोचती हूँ कि यदि इसी खेल और अनुभव आधारित विधि का प्रयोग सामान्य बच्चों में भी किया जाए तो परिणाम आश्चर्यजनक होंगे।
0: जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: समावेशी शिक्षा की सफल शुरुआत शायद यहीं से होती है। मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों के संदर्भ में सफलता मिलने पर मॉन्टेसरी ने इसी विधि का उपयोग सामान्य बच्चों की शिक्षा के लिए भी किया।
3: उनकी असाधारण सफलता को देखते हुए इटली की सरकार ने उन्हें बाल गृह संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। मारिया मोंटेसरी ने बाल शिक्षा विषय पर अनगिनत लेख लिखे और एक पुस्तक भी लिखी जिसे आज विश्व मोंटेसरी मेथड्स के नाम से जानता है।
2: 1939 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के निमंत्रण पर वो भारत आईं और देश भर में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति पर व्याख्यान दिए। उन्होंने लगभग पूरे विश्व में जाकर मोंटेसरी शिक्षण विधि का प्रचार प्रसार किया।
3: आज पूरे विश्व में मोंटेसरी शिक्षण पद्धति पर आधारित अनगिनत विद्यालय हैं, जो बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित सीखने सिखाने के कार्य में जुटे हैं।
2: मोंटेसरी पद्धति में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बच्चों का कार्य और ज्ञान में कुशलता प्राप्त करने के भाव को ही बच्चे के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उनकी शिक्षण विधि के मूल स्तंभ हैं बच्चों की स्वतंत्रता, स्वशिक्षा, रोचक शिक्षण, संवेदी अनुभव, प्यार और सम्मान।
3: छह मई 1952 को इस महान शिक्षा शास्त्री का हॉलैंड में निधन हो गया। मारिया मोंटेसरी को 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। उन्हें फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से भी नवाजा गया और दुनिया के कई महानतम विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। आधुनिक शोध भी उनके नवाचार और निष्कर्षों की मूलभूत भावना को मान्यता देता है।
2: विश्व शिक्षा के क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए सदा ऋणी रहेगा।
4: आओ खेलें झटपट झटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाएं हम अक्षरों की।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर मेरी पसंद प्रोग्राम के तहत आप सुनेंगे चंद फिल्मी नगमे। सपेर 3:30 कहकशा प्रोग्राम के तहत आज हम आपको सुनवाएंगे फिल्म चितचोर की कहानी और उसके नगमे। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है मोहतरमा जहांआरा चौधरी ने। शाम 4:00 आप लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। शाम 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। सामने एक मुख्तसर तारुफ इससे मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में नुमाया कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरतहाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। आज पूरे मुल्क में गणेश चतुर्थी अकीदत और जोशोखरोश के साथ मनाई जा रही है। और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमेरिका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जोर देकर कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी इख्तसादी तरक्की और कौमी सिक्योरिटी की अहम बुनियाद है। उन्होंने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा दो रोज़ा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के दौरान रुकन मालिक ने तवानाई के बाजार को मुस्तहकम बनाने और अहम तवानाई के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ ज़राए से उसकी बिला रुकावट सप्लाई को बरकरार रखने की ज़रूरत को उजागर किया। समिट के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खबरदार किया कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की की राह में रुकावट पैदा हो सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग को समरावर और नतीजा खेज बनाने पर ब्रिक्स के सभी रुकन मुल्कों के रहनुमाओं के तई तशक्कुर का इजहार किया है। दो रोजा सरबराह मीटिंग के अहम लम्हों की झलकियों पर मुश्तमिल एक वीडियो वजीर आजम के सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट किया गया है। इस वीडियो में सरबराह मीटिंग के मौके पर वजीर आजम की तकरीर के एक हिस्से को दिखाया गया है, जहां उन्होंने ये कहा था कि ब्रिक्स के जरिए भारत ने दोस्ती शराकतदारी और तमाम तर शोबों में तआवुन को आगे बढ़ाया है। भारत ने 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी की। इसमें 11 रुकन मुल्कों और ग्रुप के 10 शराकतदार मुल्कों के रहनुमा शरीक हुए। इसके अलावा कुछ बैनुल अक़वामी तंजीमों ने भी इसमें शिरकत की। जनाब मोदी ने सरबराह मीटिंग के मौके पर पिछले 3 दिन के दौरान मुल्कों और हुकूमतों के सरबराहों के साथ 15 दोतरफा मीटिंगें भी कीं। वजारत खारजा ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के कामयाबी निकाद में उनके तआवुन के लिए सभी मरकजी हुकूमत के महकमों और एजेंसियों के तई तशक्कुर का इजहार किया है। यह सरबराह मीटिंग कल कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर हुई। वजारत ने कहा है कि सरबराह मीटिंग का इनका एक वसी तकरीब थी, जिसमें हुकूमत और पूरे मुल्क की जामे कोशिशों की जरूरत थी। उसने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी करने के लिए सभी रियासती हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुध के रोज नई दिल्ली में यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया का इफ्तिताह करेंगे। इसमें 40 से ज्यादा मुल्कों के 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक़वामी कंपनियां और वफूद हिस्सा लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत की सरकर्दा सेमी कंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका अहतमाम इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT महकमे की वजारत और सेमी मुश्तरक तौर पर कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि फौज की अंथक कोशिशों के सबब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर कंट्रोल में है। वजारत दिफा ने 2025-26 की अपनी ताज़ा सालाना रिपोर्ट में कहा है कि इन कोशिशों से तशद्दुद में नुमाया कमी आई है, एहतजाज कम हुए हैं और पत्थरबाजी के वाकयात बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल हिस्से में सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई। ताहम गुज़श्ता बरस फौजी कार्रवाइयों की डायरेक्टर जनरल्स की सतह की बातचीत के बाद बड़ी हद तक सूरत हाल मुस्तहकम हुई है, लेकिन गैर यकीनी बरकरार है। मस्कुरा रिपोर्ट में चीन के साथ मजमूई हालात को भी उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि शिमाली सरहदों के दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फोर्सेस की तैनाती में भी साल 2025 में नुमाया कमी आई है। बिजली, हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल G20 के तवानाई महकमे के वजीरों की मीटिंग में शिरकत के लिए अमरीका पहुंच गए हैं। ये मीटिंग अमरीका की सदारत में हो रही है और ये बुध के रोज तक जारी रहेगी। जनाब मनोहर लाल मुख्तलिफ अहम इजलासों में शरीक होंगे,

0: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फेटेज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, आपसे चंद लम्हों के बाद आप खबरें सुनेंगे।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जोर देकर कहा है कि तवानाई की यकीनी फराहमी इक्तसादी तरक्की और कौमी सिक्योरिटी की अहम बुनियाद है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की की राह में रुकावट पैदा हो सकती है।

0: कश्मीर की सिक्योरिटी सूरतेहाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत की लिसानी गुनागुनियत कसरत में वहदत के जज्बे को मजबूत बनाती है। उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है और यूएस ओपन टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। मेरी पसंद प्रोग्राम के सभी सामयीन को मेरा आदाब।

0: जी अब सुनिए बंधन फिल्म का नगमा, महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया हुआ।
1: जाना है तो जाओ।

ये थी मेरे पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। कहकशा प्रोग्राम के तहत लीजिए सुनिए फिल्म चितचोर की कहानी और उसके नक में। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया है मोहतरमा जहां आरा चौधरी ने।

पीताम्बर चौधरी यानी ए के हंगल हिंदुस्तान के एक गांव मधुपुर में एक स्कूल के हेडमास्टर हैं। उनकी एक बेटी है गीता यानी जरीना वहाब। गीता खालिस देहाती लड़की है जिसका मिजाज मासूम और बचकाना है और वो हमेशा अपने एक पड़ोसी बच्चे दीपू यानी मास्टर राजू के साथ खेलती रहती है। पानी में नाव चलाना, पतंग उड़ाना ये उसके मासूम से शौक है। पीताम्बर चौधरी की बड़ी बेटी मीरा की चिट्ठी आती है और वो लिखती है गीता के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़का इंजीनियर है, बहुत खुले मिजाज का है, गीता से मिलवा देना। लड़का उसे परखना चाहेगा इसलिए माँ से कहना उस पर एतराज ना करें। अगर ये रिश्ता हाथ से निकल गया तो फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। इस पर माँ कहती है कि मैं गीता को समझा दूंगी, आप लड़के के लिए पास का बंगला खुलवा दीजिए। तभी गीता दीपू के साथ खेलती हुई आती है और दौड़ती हुई चली जाती है। माँ उसे देखकर फिक्रमंद हो जाती है। पीताम्बर चौधरी विनोद यानी अमोल पालेकर को लेकर बिना कुछ पूछताछ के बंगले पर ले आते हैं। विनोद को मधुपुर बहुत पसंद आता है, कुदरती मनाजिर की खूबसूरती उसके दिल को लुभाती है। दूसरी तरफ गीता की माँ यानी दीना पाठक उसे समझाती है कि अब वो बड़ी हो गई है, उसकी शादी की बात चल रही है, अब समझदारी से रहा कर, ज्यादा शरारती न किया कर। साथ ही उसे बताती है कि लड़का बहुत अच्छा है, विलायत से इम्तिहान पास करके आया है। पर इस पर गीता जवाब देती है कि उसे शादी नहीं करनी, उसे बहुत पढ़ाई करनी है, स्कूल की हेडमास्टर बनना है, बिल्कुल अपने बाबूजी की तरह। पीताम्बर चौधरी घर आते हैं और विनोद की बहुत तारीफ करते हैं। गीता और दीपू विनोद को नाश्ते के लिए घर बुलाने जाती है और वहाँ विनोद को गुनगुनाते देखकर हंसने लगती है क्योंकि उसे रागों की समझ नहीं होती। जब उसे विनोद समझाता है गीता और दीपू को कुछ समझ नहीं आता। गीता उसे नाश्ते का बुलावा देकर चली जाती है। जब विनोद शाम को नाश्ते पर आता है तो गीता की माँ गीता के बनाए हुए नाश्ते की तारीफें करती है और विनोद को मुतासर करने की पूरी कोशिश करती है। अब यह सिलसिला रोज का हो जाता है। रोज गीता फूल लेकर विनोद के बंगले पर जाती है। मौसीकी की समझ न होने की वजह से गीता हंसती है और कहती है कि कौओं पर रहम कीजिए। उसकी हंसी पर विनोद एक खूबसूरत नगमा गाता है

गाना सुनने के बाद दीपू कहता है हमें हारमोनियम बजाना सिखा दें। इस पर गीता मना कर देती है और शाम को खाने पर आने के लिए कहकर चली जाती है। शाम को विनोद खाने के बाद घूमने जाता है और गीता से पूछता है गाना कैसा था। उस पर गीता शर्मा जाती है। विनोद अपने नदी पर बांध बनाने के काम में मशगूल हो जाता है। इधर घर पर गीता विनोद की नकल उतार कर मजाक करती है, जिस पर उसकी माँ नाराज हो जाती है। तभी विनोद

गीता के घर आ जाता है और अपनी गाड़ी में बैठा कर घुमाने ले जाता है। गीता उसे अपना मधुपुर घुमाती है और गांव के खूबसूरत जगहों पर ले जाती है। वहां के बारे में जो भी मालूमात उसे होती है सब विनोद को बताती है। यहाँ विनोद गीता से अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है। पीताम्बर चौधरी अपने आप ही सगाई की तारीख तय करने की सोचते हैं। इधर विनोद गीता को गाना सिखाना शुरू करता है।

विनोद गीता के घर में घुल मिल जाता है और अब बेझिझक गीता के घर आने जाने लगता है। तभी एक खत आता है। माँ कहती है जरूर मीरा का होगा। शाम को मास्टर जी घर आते हैं। माँ उन्हें खत देती है। खत पढ़कर मास्टर जी फिक्रमंद हो जाते हैं। माँ कहती है क्या बात है? तब मास्टर जी बताते हैं जो लड़का आना था वो दिल्ली चला गया था, इसलिए वो नहीं आ सका और अगले हफ्ते आएगा। गीता की माँ फिक्रमंद हो जाती है और गीता को विनोद के यहाँ से बुलाने के लिए मास्टर जी को भेज देती है। माँ उसे समझाती है कि ये लड़का वो नहीं है जिसका जिक्र उसकी बहन मीरा ने अपने खत में किया था। वो परसों आएगा और अब उसे विनोद से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ उससे उसका नाम पूछती है, पर गीता को भी विनोद का नाम मालूम नहीं होता, जिस पर गीता कहती है कल पूछ कर बताऊंगी। लेकिन माँ उसे सख्ती से मना कर देती है कि अब उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो दिन भी आ जाता है जब सुनील किशन यानी विजेंद्र आ जाता है और विनोद उसे स्टेशन लेने जाता है, पर हर जगह वो गीता को ही याद करता है। उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब हो जाता है और सुनील किशन को लेकर गीता के घर पहुंच जाता है और गीता को देखकर कुछ सुकून पाता है। अब माँ गीता पर दबाव डालती है कि गीता सुनील के लिए गुलदस्ता लेकर जाए, पर गीता नहीं मानती। माँ के जबरदस्ती करने पर गीता गुलदस्ता लेकर जाती है और सुनील को गुलदस्ता देकर वापस आने लगती है। सुनील बात करना चाहता है पर उसकी बातें भी गीता को अच्छी नहीं लगती और वो विनोद को याद करती हुई वापस चली आती है। जब शाम को विनोद वापस आता है तो गुलदस्ता देखकर पहचान लेता है कि गीता जरूर चाय पर बुलाने के लिए आई होगी। वो पीताम्बर चौधरी की तारीफ करता है कि वो बहुत मेहमान नवाज हैं, सब लोग बहुत दिलदार हैं। फिर शाम को खाने के बाद सुनील विनोद से गाने के लिए कहता है। इस पर विनोद गीता से कहता है कि चलो आज तुम्हारे गाने का इम्तिहान हो जाए। फिर दोनों मिलकर गाना गाते हैं।

गीता के घर आता है, फिर गीता के साथ घूमने जाता है और उसे पूछता है कि उसकी इस रिश्ते के बारे में क्या राय है। पर गीता का कोई जवाब न पाकर वो खामोश रह जाता है। उधर विनोद घर आता है और गीता के बारे में पूछता है, पर गीता की माँ उससे झूठ बोल देती है कि गीता घर पर नहीं है। गीता को अपनी माँ को झूठ बोलते देखकर अफसोस होता है। उधर विनोद गीता को ढूंढने लगता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। वो दीपू के हाथों एक चिट्ठी उसे भिजवाता है और नदी पर मिलने के लिए बुलाता है, पर गीता माँ की वजह से नहीं आ पाती। गीता के बारे में सुनील पूछता है कि वो कैसी लड़की है। उस पर विनोद उसकी तारीफ करता है। उसी दौरान पिकनिक पर जाने का प्लान बनता है। सुनील, गीता, विनोद और दीपू सब मिलकर पिकनिक पर जाते हैं। विनोद गीता से गाने के लिए कहता है पर गीता मना कर देती है और विनोद अकेले ही गाना गाता है।

पिकनिक के दौरान सुनील विनोद को अपने इरादे के बारे में बताता है कि वो यहाँ गीता को शादी के लिए देखने आया है। ये बात सुनते ही विनोद का दिल टूट जाता है, पर फिर भी वो अपने आप को संभालता है और कहता है कि गीता बहुत अच्छी लड़की है, ज्यादा न सोचें, इस दौर में इतनी अच्छी लड़की आपको नहीं मिलेगी। उधर विनोद गीता से बात करता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी और मैं सबसे माफी मांग लूंगा, तुम सुनील से शादी कर लेना, वो बहुत अच्छा इंसान है। सुनील शादी के लिए हाँ कर देता है। माँ और पीताम्बर चौधरी बहुत खुश होते हैं। उधर मास्टर जी एक खत लिखकर अपनी बड़ी बेटी मीरा को भी बुला लेते हैं, पर गीता शादी से इनकार कर देती है। उस पर उसकी माँ उसे समझाती है कि सुनील अच्छा लड़का है, हम तेरा भला चाहते हैं। इधर विनोद बम्बई जाने का इरादा करता है और सुनील उसे रोकता है, पर विनोद उसे इल्तजा करता है कि उसे जाने दिया जाए, वो उसकी शादी पर जरूर वापस आ जाएगा। विनोद चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गीता को विनोद के जाने की खबर मिलती है तो वो भी रेलवे स्टेशन जाने का फैसला करती है। माँ कहती है, कहाँ जा रही हो, आज के दिन बाहर नहीं जाते, आज तुम्हारी सगाई है। उसकी बहन मीरा भी उसे समझाती है। तब गीता कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं विनोद से ही शादी करूंगी, भगवान की यही मर्जी थी, नहीं तो सुनील की जगह विनोद नहीं आता, जो होना था वो हो चुका है। ये कहकर वो स्टेशन चली जाती है। गीता विनोद को ढूंढती है लेकिन विनोद नहीं मिलता और रेल चली जाती है। दुखी मन से गीता वापस आने लगती है। गीता को सुनील स्टेशन के बाहर खड़ा मिलता है और उसे घर ले आता है। घर आने के बाद गीता को विनोद दिखाई देता है, तब वो मुस्कुराती है। विनोद कहता है, मास्टर जी और सुनील ने मुझे जाने ही नहीं दिया। पर इस बात पर सुनील कहता है, मैंने और मास्टर जी ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हें गीता ने रोका है। विनोद, तुमने तो हार मान ली थी, पर गीता ने अपना यकीन बनाए रखा और उसकी सच्ची लगन ने ये बाजी जीत ली। तुम्हें गीता जैसी जीवन साथी कहीं नहीं मिलेगी, तुम्हें इसकी

कहकशां प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे फिल्म चित चोर की कहानी और उसके नाम में। इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था मोहतरमा जहारा चौधरी ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्रेडिश पर आप हमारी नशियात सुन रहे हैं। और अब सुनिए कुछ फिल्मी नगमे। सभी सामईन को गणेश चतुर्थी की पुरखलोस मुबारकबाद।

सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में एक ये भजन आप सुन रहे थे कालचक्र फिल्म से, और एक और गणपति भजन अनु मलिक और साधना सरगम की आवाजों में, फिल्म है जोरदार।

और ये सुनिए शोले फिल्म का तो गाना किशोर कुमार और मन्ना डे का गाया हुआ। मौसीकी आर डी बर्मन की।

सुनिए, सीता और गीता फिल्म का नगमा अशोक भोसले और किशोर कुमार का गाया हुआ।

नागिन फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में, और लीजिए सुनिए किशोर कुमार का गाया हुआ ये नगमा, साथ में है निशिक कोहली, फिल्म है नौकर बीवी का।

उन्होंने टेक्नोलॉजी और आम मादनियात को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए खबरदार किया। नई दिल्ली में मुनक़िदा दो रोज़ा ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान रुकन ममालिक ने तवानाई के बाजार को मुस्तहकम बनाने और अहम तवानाई के बुनियादी ढांचे के मुख्तलिफ ज़राए से उसकी बिला रुकावट सप्लाई को बरकरार रखने की ज़रूरत को उजागर किया। समिट के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खबरदार किया कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की की राह में रुकावट पैदा हो सकती है। ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सबसे अहम बात नई दिल्ली एलानिया रहा, जिसमें बड़े जुग्राफियाई, सियासी और इकतसादी मामलों पर मुश्तरक मौकफ को उजागर किया गया। मगरबी एशिया की सूरत हाल के बारे में ब्रिक्स रहनुमाओं ने जहां तक हो सके जब्त तहमुल बरतने और मुज़ाकरात सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने आम शहरियों और सिविलियन बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज़ फराहम करने पर भी जोर दिया। वजारत खारजा ने नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद में उनके तआवुन के लिए सभी मरकजी हुकूमत के महकमों और एजेंसियों के तहत तशक्कुर का इजहार किया है। ये सरबरा मीटिंग कल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुई। वजारत ने कहा है कि इस सरबरा मीटिंग का इनेकाद एक वसी तकरीब थी जिसमें हुकूमत और पूरे मुल्क की जामे कोशिशों की जरूरत थी। उसने ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की मेजबानी करने के लिए सभी रियासती हुकूमतों का भी शुक्रिया अदा किया। हुकूमत ने कहा है कि फौज की अनथक कोशिशों के सबब जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी की सूरत हाल बदस्तूर कंट्रोल में है। वजारत दिफा ने सन 2025-2026 की अपनी सालाना ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि इन कोशिशों से तशद्दुद में नुमाया कमी आई है, एहतियाज कम हुए हैं और पत्थरबाजी के वाकयात बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर में और कंट्रोल लाइन से मुतसिल हिस्से में सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। तमाम गुज़श्ता बरस फौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल की सतह की बातचीत के बाद बड़ी हद तक सूरत हाल मुस्तहकम हुई है, लेकिन गैर यकीनी बरकरार है। मजकूरा रिपोर्ट में चीन के साथ मजमू हालात को भी उजागर किया गया है। इसमें कहा गया है कि शुमाली सरहदों के दूसरी तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फोर्सेज की तैनाती में साल 2025 में नुमाया कमी आई है। बांग्लादेश के उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत हुमायूं कबीर ने कहा है कि बांग्लादेश कसीर मुल्की फोरमों के बजाय दो तरफा बातचीत के जरिए भारत के साथ नए ताल्लुकात की समत आगे बढ़ने का ख्वाहिशमंद है। ढाका में वजारत खारजा में नामा निगारों से बात करते हुए जनाब कबीर ने कहा कि बांग्लादेश को बाहमी मफाद की बुनियाद पर भारत के साथ ताल्लुकात कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इलाकाई और बैन अल-अक़वामी फोरमों के मौके पर जब भी जरूरी होगा बांग्लादेश दीगर मुल्कों के साथ मीटिंगों का सिलसिला जारी रखेगा। बांग्लादेश भारत सरहद पर हालिया वाकयात के बारे में जनाब हुमायूं कबीर ने कहा कि बांग्लादेश में बैन अल-अक़वामी कवानीन, मौजूदा सरहदी इकरारनामों और बाहमी समझौते की पासदारी करते हुए सिफारती बातचीत के जरिए मामला हल करने की कोशिश करेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यमन के हौसी बागियों ने जनूबी बहर अहमर में कलीदी अहमियत के हामिल मजीद जजीरों पर कब्जा कर लिया। यमन सरकार के अहदेदारों हौसी तर्जुमान के मुताबिक बागियों ने आबनाए बाबुल मंदीप के 160 किलोमीटर शुमाल में वाकई जजीरों पर लड़ाकुओं को तैनात किया है। इन जजीरों से सरकार के वफादार सैकड़ों फौजियों के हटने के बाद हौसियों ने इन जजीरों पर अपने कंट्रोल में ले लिया है। इससे कबल बागियों ने आबनाए बाबुल मंदीप में सऊदी अरब की पुष्पनाई वाले यमन सरकार की फोर्सेस के कब्जे से बंदरगाही शहर मोखा और मियान जजीरे को छुड़ाकर अपने कब्जे में ले लिया था। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अदनॉम गेब्रेसिस ने सेहत के मामले में मजबूत इश्तराक, इख्तराब, पायदारी और तसलसल के साथ माली मदद पर जोर दिया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर डॉक्टर टेड्रो ने कहा कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के चार मौजूद बराह रास्त आलमी सेहत से मुंसलिक हैं। उन्होंने ममालिक पर जोर दिया कि वह सेहत की इब्तदाई देखभाल, निगरानी, पेशगी वार्निंग सिस्टम और मजबूती की खातिर मकामी पायदावार को मुस्तहकम करें। इख्तिरा के सिलसिले में उन्होंने साइंस, डिजिटल सेहत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वसी पैमाने पर इस्तेमाल पर जोर दिया ताकि इसके फवाइद माशरे के सभी तबकात तक पहुंच सकें। बिजली महकमे की वजारत ने नेपाल की बिजली अथॉरिटी को रोजाना 18 घंटे बिजली बरामद करने की मंजूरी दे दी है। ये सिलसिला इस साल 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। वजारत ने कहा कि 600 मेगावाट तक बिजली बरामद करने की मंजूरी दी गई है। नेपाल

0: आलिया सैलाब से पनबिजली बुनियादी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और बिजली तैयार करने की उसकी सलाहियत कम हो गई है और इस तरह बिजली की इजाफी ज़रूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से मुश्किल की इस घड़ी में नेपाल को उसकी बिजली की ज़रूरियात पूरी करने में मदद की जा सकेगी और भारत और नेपाल के दरमियान तवानाई के शोबे में कलीदी और तवील अरसे से कायम तआवुन को मज़ीद तकवीत मिलेगी। रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरेट ने ऑपरेशन दीप मैनिफेस्ट के तहत पाकिस्तानी मार्के वाली 362 मैट्रिक टन से ज़्यादा खुश्क खजूरें जब्त की हैं। वजारत खजाना ने बताया कि मखसूस खुफिया इतला मिलने पर डायरेक्टरेट ने अफसरों ने खुश्क खजूर के 13 कंटेनर रोके। ये खेप मुत्तहिदा अरब अमारात से आई थी। ये खजूरें पाकिस्तान की कराची बंदरगाह से एक बहरी जहाज के जरिए मुत्तहिदा अरब अमारात की जेबेल अली बंदरगाह रवाना की गई थी। वजारत ने कहा है कि पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के बाद से सरकार ने कौमी सलामती के मफाद में पिछले साल 2 मई से पाकिस्तान से बराह रास्त ये बिलवास्ता बरामद होने वाले हर तरह के सामान पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल तक हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, मशरकी राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में शदीद बारिश का इम्कान का इजहार किया है। आइंदा 2 रोज के दौरान अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कैरिकल, केरलम और माहे में भी कल तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस दौरान दिल्ली में मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि आज शाम हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में जुनूब मगरबी बलूचिस्तान सूबे में एक कोयला कान में गैस धमाका होने से 4 कानकुरों की मौत हो गई जबकि 5 जख्मी। इत्तिलात के मुताबिक हरनाई जिले में एक कोयला कान के अंदर गैस जमा हो जाने के बाद ये वाकया पेश आया। पिछले महीने भी बलूचिस्तान के सूबे के डूकी जिले में एक कोयला कान में काम करते वक्त जहरीली मिथाइन गैस के रिसाव के बाद 2 अफगान शहरियों समेत 3 कोयला कानकुनों की मौत हो गई थी। जर्मनी के अलेक्जेंडर जावेर ने US ओपन टेनिस का मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया। उन्होंने कल रात न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में अमेरिका के बेन शेल्टन को 6-3, 7-6, 5-7 और 6-2 से हराया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जोर देकर कहा कि माशी तरक्की कौमी सलामती के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी अहम बुनियाद है। इन लीडरों ने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ खबरदार भी किया। दिफा की वजारत की रिपोर्ट में कहा गया सन 2025 में चीन ने फौजियों की तैनाती में कमी की है। रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल को मुस्तहकम करार दिया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कोयला कान में गैस धमाका होने से 4 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 5 जख्मी हुए। और US ओपन टेनिस में जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़ेवर ने अमरीका के बेन शेल्टन को हराकर मर्दों का सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे जाते हैं, हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शब के 9:15 पर आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: अभी तक आप हमारी नशरियात समाप्त फरमा रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। मीडियम 684 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी करगिल से आपसे मुखातिब हैं। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक अब आप हमारी नशरियात मौजूदा मीटर के अलावा मीडियम 1584 किलोहर्ट्ज़, 199.4 मीटर और न्यूज़ ऑन AIR एप्स पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। السلام علیکم میڈیم ٹو گیا ننگی شجبی نجبی کلو ہرٹس میڈیم سوچی نغبیا ننگی شجبی نجبی کلو ہرٹس دونا نیوز اون اے آئی آر ایف سی کا چس آکاش وانی کرگل نظر چگن درنگ جاپو چندرال سپتمبر سے سلسی چجبی وقت پو فتو گے تو سو دغا سن سوک کستا درنگ پروگرامی گوزو پی کا ارسخما قرآنی تلاوتنا ترجمہ این مذہب منخنونین فیاض خان نا شیخ محمد عیسیٰ حافظی کا نام
3: اعوذ باللہ من الشیطان

आकाशवाणी दिल्ली ना हिंदी ना अंग्रेजी खबरों रेले बचा सिन तुसो टुगे का टुगना उन्हें चुगे का दर्दी इशिनार लुरिक प्रचुचा सिन सगेत पानीफिया प्रोग्राम यन मजा टुगना फेटिका यहां स्पर्श अनुनिफिया प्रोग्राम प्रचुचा सिन फितोगे तुसो उर्दू निका यंग उर्दू नमनर जिपजी का आकाशवाणी श्रीनगर ना उर्दू खबर ना तबसरान रिले बचा सिन यूट्यूब पर मिनी फिया प्रोग्राम यान मजा सनी तो सुत रिक्यातिका रिक्यात नौ मिनट इजिप्ट जगह का हिंदी अंग्रेजी दोना उर्दू खबरों रिले बचा सिन आकाशवाणी दिल्ली ना सनी तो सुत रुकुना फितिका प्रोग्राम यान मजा गुड लुक्स दुनिया में नची दिलीं प्रचुपत पे प्रोग्राम ने सिर्फो मीडिया में विका दिव आकाशवाणी करगिलिन वक्सपो खबरों ने थोसों सुख कसता पुर्गी खबर यान मजा

0: मित्रों आज से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है, गणपति बाप्पा का आगमन हो चुका है और निश्चित रूप से ये मणिकंचन योगी है कि आज हिंदी दिवस भी है और गणपति का स्थापन का दिन भी आज है। आज यहाँ पर हिंदी शब्द संसाधन, हिंदी टंकण अंशुलिपि, इसके प्रशिक्षण का भी शुभारंभ हुआ है। राजभाषा कीर्ति और राजभाषा गौरव पुरस्कार का भी सबको सम्मानित करने का काम हुआ है। जिन जिन लोगों को राजभाषा कीर्ति सम्मान और राजभाषा गौरव पुरस्कार मिला है, वो सभी को मैं मन पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। शिव छत्रपति की भूमि पर ये हिंदी भाषा का कार्यक्रम दोनों निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आगे बढ़ाएंगे। राजभाषा की यात्रा को, भारतीय भाषा की यात्रा को उन्होंने जिस तरह से महत्व दिया था, वो आने वाले दिनों में आगे बढ़ेगा। यहाँ मराठी का तो सम्मान है ही है, होना ही चाहिए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ही मराठी को सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। जब आप महाराष्ट्र की भूमि पर आते हो, कोंकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी, कन्नड़, वारली, अनेक भाषाओं एक साथ यहाँ पर उसका विकास भी हुआ, उसका सम्मान भी हुआ और उसकी स्वीकृति हुई।
1: دی هندی دیوست پر نظام سه گورمن دیگری کالیش کرگیلیس شخشوک ندرسه دی جاقو ملکیون سین یعن دیانو کالیجی طالب علمونیس دونه فکر

0: मीडियम में भी करियो, आकाशवाणी करियो, लेकिन वक्त वो तुझो तो गना फैसों सुखा सता और तेरे लोग सिहा गुंग मजद।
1: दोस्तों नमस्कार, हेल्थ एंड्स के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बहुत बार जब हमारे घर में कोई स्त्री गर्भवती होती है तो ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई टीके लगवा लीजिए। अब ये टीके क्यों लगवा लें, उसके क्या लाभ है, हम नहीं लगवाते हैं तो क्या इसके नुकसान होंगे, तो अब ये जानना आवश्यक है कि भाई टीकाकरण जरूरी क्यों। इसके लिए जरूरी है कि हम किसी विशेषज्ञ से बात करें और दोस्तों आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य जो SGPGI लखनऊ में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सुभाष जी। तो आज जब टीकाकरण की बात आई है
1: जी।
2: तो हम आपको दो बच्चों की बात बताएं। पहले
1: हुँ.
2: 9 महीने पे हम लोग खसरे का टीका लगाते हैं।
1: जी
2: एक टीकाकरण से हमें एक बच्चे को हम सुरक्षा
1: जी
2: प्रोटेक्शन देते हैं,
1: जी जी
2: ताकि बड़ी बीमारियों से स्पेशली पांच
1: बचा
2: छह
1: जा सके।
2: बीमारियां हैं जिसमें खसरे का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया
1: जी
2: वो एक है। अब दूसरे बच्चे की बात करें, दूसरा बच्चा 5 साल पे आया मेरे पास, उसके एक पैर में लकवा हो गया था। पता चला कि उसने पोलियो का टीका नहीं लगवाया था, वो डॉक्टर का बच्चा था। पता चला उनका बच्चा गांव में था और वहां उन्होंने टीका लगाने से मना कर दिया था उनके दादा दादी ने। तो क्या इस पोलियो को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते थे? अगर हम पोलियो के ड्रॉप्स पिला देते बच्चे को, तो हमने बोला सुरक्षा, अब हम बोल रहे हैं प्रिवेंशन,
1: जी
2: जैसा कि हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
1: क्यों
2: तीसरी चीज, आप जानते हो इंडिया में तो हम इरेडिकेट कर चुके हैं पोलियो को, हम पोलियो का एग्जाम्पल ले रहे हैं,
1: जी
2: आगे बढ़ रहे हैं कई और बीमारियों की तरफ। तो अगर हम स्मॉल पॉक्स जैसी, जिसको बड़ी माता बुला करते थे लोग,
1: जी जी जी
2: स्मॉल पॉक्स को हम इराडिकेट कर चुके हैं, हम इंडिया से पोलियो को इराडिकेट कर चुके हैं, तो ये कैसे बन पाया? ये इराडिकेशन सिर्फ टीकाकरण से ही बन पाया।
1: जी जी जी जी
2: तो तीन तो मैंने विशेषताएं आपको गिनवा दी कि एक तो ये प्रोटेक्शन देता है,
1: जी
2: दूसरा ये प्रिवेंशन करता है, और तीसरा ये इरेडिकेशन करता है बड़ी बड़ी बीमारियों का।
1: जी
2: देखिए अब हमें टिटनेस सुनने तक को नहीं मिलता है।
1: जी
2: और जहां भ्रांतियों की बात आपने की, तो वैक्सीन जो है इतने लाखों करोड़ों बच्चों में लगता है,
1: जी
2: तो उसके बावजूद वो सेफ है, वो इफेक्टिव है। तो ये चीजें तो हमको माननी पड़ेंगी कि वैक्सीन से फायदा होता है।
1: जी
2: अब आपको एक और एग्जाम्पल फायदे की बात कहें,
1: जी
2: जो नया बच्चा पैदा होता है उसमें थोड़ा बहुत माँ के खून से छन के प्रोटेक्शन आता है, पर वो संपूर्ण तरह से इमेच्योर

0: होता है बच्चा, उसका इम्यूनिटी बढ़ रहा होता है, उसका इम्यून सिस्टम मच्योर हो रहा होता है, उसके बाकी अंग मच्योर हो रहे होते हैं, तो उसमें लड़ने की ताकत होती नहीं है। तो उसको टीकाकरण हम सबसे पहले शुरू करते हैं 1.5 माह पे। तो अगर उसके इर्द गिर्द जो एडल्ट्स हैं वो टीकाकरण अपना करवा लेते हैं तो वो बच्चे तक बीमारी पहुंच ही नहीं पाएगी।
1: जी।
0: और जब वो 1.5 महीने का होगा उसको हम टीकाकरण करके सुरक्षा देना शुरू करेंगे। आप सोचो कि एक बच्चे के पीछे, सपोजिंग बच्चा स्कूल गोइंग बच्चा है और आपने उसको टीकाकरण नहीं कराया है और उसको काली खांसी हो गई, तो कितने दिन वो स्कूल नहीं जा पाएगा, कितने दिन उसकी तीमारदारी में माँ बाप छुट्टी लेके बैठेंगे। तो ये सब समस्याएं तभी आती हैं जब आपने समय पर टीकाकरण नहीं कराया होता है।
1: जी, जी।
0: और आपने जर्मन मीजल्स का नाम सुना होगा, जब माताओं को अपंग बच्चे पैदा होते हैं तरह तरह के डिफॉर्मिटीज लेके।
1: जी जी जी।
0: तो नॉट ओनली प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन और इरेडिकेशन, आपने एक सुरक्षा घेरा दिया
1: जी।
0: आपने अपने आगे वाली पुश्तों को सेफ रखा, आपने कितने सारे पैसे और समय की बचत कर ली।
1: जी जी जी जी, जी।
0: तो इन सब कारणों से एसेंशियल है कि आप समय पर अपने बच्चे का टीकाकरण जरूर जरूर करें।
1: जी जी। तो श्रोताओं, आपने डॉक्टर साहब को सुना ही और मुझे उम्मीद है कि आप अपने बच्चे का टीकाकरण अवश्य करवाएंगे। यदि कुछ लेट हो गया है तो भी आप उस चिकित्सालय में जाएं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।

छोसानुक भगवान खाचिग्योतांग दयानुक नाम यिंगबिंग मत पे भगवान चिक गणेशा जरे यानी गणेश जरे खोस मिंग तकपा सोसै नंग हिंदू छोसानुक मता अलजा खाचिग्यो दिनचुक दिल जयानुक ना भद्रापदा जरबी दिल जे ज्व्य भद्रापदा जर जरखान पु हुई जे किंचुक दिल जे ज्व्य खुंस दिजकपु माला क्यों मचुक लोबिंग मा जो तिल जे हिसाबिका अगस्त या सितंबर रिल जयानुक ज्यू युमा छाचुक लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेशा अकलमंदी शेष दुना यर्गस मिंगना मिंगबिंग स्थिया छाचुक यंग चीज कबलस बर्द्विक ची नक्स बर्द्विक मुश्किला चिक युना दुन मेचबे मिंगना दी छोसी म्यूनिस चोरबा छाचुक दी भगवान पुला नी दिरी सीधी जग पैनुक यानी गणेश चतुर्थी जरबी दी फेस्पा जग पैनुक दी छोसनाज ब्रनुत खन मीमांग सुनिस रंग नुक यंग दुना नंग ना फेस्ता मलसा नैनुक भगवान गणेश ही और गुस्पे चोसे यानी मूर्ति चोसे यक पचा सुख यंग दुना गंगमा जम सु से मलसा मामुक खुस पूजा बा छा सुख यंग दी यकपु छोमस पना दी मूर्तियुन छे नुक तमा छा सुख गावला गणेश विसर्जन जरे जर बचा सुख यंता थोस दुख तुक लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेशा जरबना खुए गो लंगपो चुके ओ दिन सुख यंग और गो मीर गो दिन सुख दुना नाउन छो गो दिन सुख दी दी भगवानी यंग दोंग जर बचन दुख हिंदू छो से नुक का खाकचन लशिक बा रुगोसना या बा बबत्सिक स्नल्ला भगवान गणेशी मिंताक्स लेने खुआ चोरबा छात निगा छोशी गिन्ना या गा यक चिक या गा फेस्टिवल चिक मल्ला क्यों न कतुक नतंग मिमांग सुनिस गा छोशी मी गिन्न कतुक स्पेरा खचिक नतेस नवा जक चस्पु दरे से तुस पेनो गता माना खाकचन चेसित स्पेरा ने अनुना स्पेरा चिचिक नता थुंग मचेत गा फेस्टिवल चिक चाहे खोरंग गचुक छोसनी मिमांग चिकिस बा छाना कतुक ओदे फेस्टिवली स्त्रोलिका या ओदे यक पी स्त्रोलिका नति खरखोरुन यानी नति दुपत पिसावन नति लुंगपो यंग नति छून सक्सुक छा नता लोबालो या यक भी माता थुंग मचेत छाना नते स्पेरा चिचिक दु मल्ल यानी स्नवा जक परो छुक गा फेस्टिवल चिक गा जक चिंग मल्ल क्यों न कतुक खुरी देना जोस्ते का यानी स्नल्ला गजुगा बात पिन्ना दुनमा नमजी म्यूनिस गजुगा बात पिन्ना देने जोस्ते का नते स्मल्ला क्यों छा यंग चिंग यंगन नतेस खरखोरी यानी सहमार सहदागी ख्याल जक परोशा साफ सफाई नतेस ख्याल जक से दी जाओ नतेस मल्ल क्यों छा चेजर बना नता दक्षन थोगो नक्स बर्दुक चैलेंज रिक नता यू मथोमत काला नतेस क्लाइमेट चेंज जरना या ग्लोबल वार्मिंग जरे गाज बसे नता लुक्सो मलसाओ नानुक छुरु दू चा हुनमित लंगता यानी रू दू चा छरपाय चा तुस मित पंगता खायु मी दी चुक्स नता नक्स बर्दून थो मचेतंग छाना दी नक्स बर्दून चे यों सिन चुक जरे यानी चल चल जुंग जुंग बखान उन्नीस ता छाना खोस दो जर बचन दु की नतेस गा जक चिक माल लिख होना या नती इंसान उन्नी दी बस पत पी लस उन्नी स्त्रोली का नती खरखोन उन्नो सक्सुक खिमो छेनो दिन चुक गाज बसे नती गांव से रुन जुचस्पू खिमो छेनो दिन चुक यंग नती ओदे यानी मौसम प्यानुक तब्दीली रिक यंग म्यूली छाती तिक पुंगता जक बजक खिमो छचस पुंगता आम छेनो दिन चुक दी जक पी का गणेश चतुर्थी का यानी गजुक नते स्पेरा रिक यानी इतुक बार गोशासिन या माल बार गोशासिन जरबना सक बजक स्नल्ला नेवा गिव अप गा शेल सब कंट्री को ना खास कर नता शर्बा नचुनी खुंती सावरी लाइन नजर नकतोक या करियर चिकनतेस गा चूस बसुत नकतोक या गा नतेस नति मकसद चिक टोन चिकोरे लास पे नकतोक ओदा नुक नता चु जिन जु चैलेंज जु उन चासन सुक यानी मुश्किलात उन चासन सुक नास बार दो उन चासन सुक तान दिन नक्स बार दोन नतेस यानी संबिगा मखुरबा दस स्त्रोरी का नतेस फंग माफा मगा लाशिक नता ओदो नजराने ओदे नक्स बार दोन नजराने नतेस नति दी लासुन बारगो चासन सुक निसरी कस रसिका नति अता यानी खिदमत बचा खुई एहतराम इज्जत एहतराम बचा पुमाना खाचन इन सुख दुआता दी जक पिकना लोस बछा सुख लिन यंग दुना गणेश जरबना नाते स्नासंग अकलमंदी यंग दुना शेसी यानी नॉलेज ही एक कस्म नाता सिम्बल ची के निशानी गिन जरबना नातेस गा शेषी की वैल्यू जगचा गा शेषी नातेस जगचस्पू रिल

0: сан жаксас бу мана какчанын сук яң дуна какчанын мат бисбере га фестивал чи га га чоси жакчик малла хёна катук натан гама жам сонсе малла хёнча суна суси чоси эзза жакчас мана да мата мана какчанын сук яң суна суси рукс басе нуна ну бай чара жакчас бу хая ни ната мана какчанын сук яң дуна га фестивал чи га жакчик малла хёна катук ната экс кап шик тобет суна сусу жам сонсе суна суси яни ж галукс жакчас бу я пиар мохаббат ната суна суси яну педа чачас пи ната экстрол чигинсук чана тес ди жагон гама зум се снин чи качик сонсе малла хюмар ошасинсук чана снал лазер санга тес гажак чик малла хюна катук шарба начуна нунга та чогор дианук рул чик я кап чик натес баян жасин гажак чик малла хюна катук натес оде жак бу деза чи бас малла хюча газ басенгати махул пика гати кархур пика яни кам се кам мана мюнце гата дека нуксан чо чар чоган яни чингян нин натес нуксан мана мюнце мана кам бенгатес фралукс бача янг дона пластики га чалак чен гатук дун гатес миколча янг дона दे फेस्टिवल पुदे जकपो माल लख्यों सरगप ना नतेस खरकोरी सफाई रंस ताचा यंग चीची गतेस मिफंगचा यंग दुना यानी गा जगा चानो गा कम्युनिटी चानो बाना कतुक दे कम्युनिटी मता स्नल नजर संगर गे सरेन सुसान मता लुक्सो छुस ना अरगलु जखनी मिमंग सुंग मता यतंग सुनु सुसु इज्जत जकसे दुन नतेस माल लख्यों चा यंग दुना दिस जागु ना नुंगतेस नतांग बा सिख छिमियुनी नतांग बा सुक बुजुर्ग इन मत पी मिमांग सुने नतेस मदद बचा कोई इज्जत एहतराम जकचस मना खचन इन सुक चाना निस परा मामिक सुंग निस परा आदि के जकसे यंदा सुक पा हिंदी दिवस यानी लोबीमा सितंबर जे चुजबिया हिंदी स्कति फेस्पा जकचिक हिंदी दिवस रे मलक हम छात सुक दिस को ला यंदा सुक पा असदुल्ला खान सरीकना त्रिसु क्लब जुगत यंतेस त्रिसु लंगन मजत हिंदी दिवस का फेस्पा वासे त्रिशूल चुपमिना दरे आकाशवाणी करगिली स्टूडियो नुक गनम बुजुग सोत असदुल्ला खान अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: सब जनला यरा उजु सरीमो रिंतोशन वक्त सुने न वक्त में से आकाशवाणी करगिली दी शरबा नचुनी प्रोग्राम प्लेयरिस तुस्तांस बुजु
1: बख्शिश जु यंतां लांग बहुत बहुत शुक्रिया कि यंते संग मतलब कि ये जक पे इम्पोर्टेंस जैसे गला दी का स्क्योट जरूरी बहुत बहुत शुक्रिया
0: बख्शिश जु छाना दिरिंग गता हिंदी दिवस रे लोवी मा सितंबर जे चुज भी हमार लगे हमार जो हिंदी दिवस यानी दी हिंदी स्कैटी मीना फेस्पा जक चिक छाना ये रस गति मीमा सुन ला फेस संग शर्बा नचुन ला दया चिक मोल चासक बच्चिक सुन ला ये दी हिंदी दिवस जरे गते मार लगे हमार 14 सितंबर ला जो चीन यंग 14 सितंबर खुरा गते जो मार ला जय हो सिन बख्शे दे स्कूल जो जा
1: बख्शे जो गति हिंदी दिवस जरबना हिंदी जक जरिन पजुआ दिवस जरबना जक जरिन त्यू गति 14 सितंबर ला गति हिंदुस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उत्पिन खुंग 14 सितंबर 1949 से नुक दुखुंस एडॉप बसपिन जो पजुआ देव हिंदी मतलब की इम्पोर्टेंस पूल तेन चिक मतलब की गति हिंदुस्तान पूरा गति लैंग्वेज डाइवर्सिटी होत दे हिसाब पे कर गति मतलब की हर जगह हिंदुस्तानी पार्ट्स मामुए नु जगह की मुए नुक हिंदी जरखानी होत पना गति ऑफिशियल लैंग्वेज ही चोक्षे बसे गति हिंदी दिवस पो हिंदी रिकॉग्नाइजेशन बसपन सो ऑफिशियल लैंग्वेज रे दो गति इम्पोर्टेंस ना से देने जग पो क्विंस एडॉप बेजग पो लगाती हिंदी दिवस रे
0: बिल्कुल बख्शी जो छा नल्फो बल संकी हिंदी सिर्फ का चिक चमिन जो है जो बल्कि दी अंगता छो तारीख छिंगता दू नंबो ब्रांड चुक गता दू मोल चा कि गास का चिकन चा गता हिंदी सो या गति फसकत गति पुर्गी जरना बल्टी जरना दिस का तू नैनुक स्कत पुना एम्बो बो सिर्फ गते सुन सुसो कम्युनिकेट वे जो सुन सुसो खबर सुन सुसो गा बातचीत चिक बना का तुक दू ना एम्बो तारीख मिन मा यंग गा गा चीज सुन दू नंबो रनंग जासन बख्शिस दिस कुल
1: चमना मैं नंगता सबसे पहला नाती लैंग्वेज जर नंगती स्कट पुजर नंगता सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नाती दक्षिण नाती स्कट योद याच गजुक स्कट योद खो नंगता सबसे पहला नंगता कम्युनिकेशन ले वाली को नंगता खो नंगता सबसे जरूरी छेद पाया ता कम्युनिकेशन मेन पे फिला दक्षिण नंगता मतलब की हिंदी बहुत ही नंगता मतलब की नंगती हिंदुस्तानी घर से घर लजर बना नंगती मतलब दू गता हर वक्त गुस गता कम्युनिकेशन जरे गता शौक सिलना टेक्स्ट बुक या दक्षा गता हिंदी इंट्रोड्यूस सो या गते कोई भी पेशा गते जर्नलिज्म का तो कतुबा कतुबा ना गता हर जगह दी हिंदी मतलब की इम्पोर्टेंस बो खिमोशन
0: बिल्कुल बख्शी जो छा ना हिंदी दिवस

0: ku nga te gazuk shi tariqa chigi bet, udun nga tang sagin alag alag yot. Dana tso ga Hindi nga tes kabi ignore mi bar go shin, du nga ti foreign language min, du nga ti Indian language in, nga ti Hindustani language in. Ni ngi nga as a Hindi teacher, ngi role po nga smalab ki student la yu tso ga interest chachu, nuk ki Hindi anu interest chachu, fin la kuin communication skill yungat, kwa encourage bacha, kwa appreciate bacha, har language la respect tong zere, har language nga te sabar go shin zere. Jai zabar di Hindi language pina nga ti cultural connection yot jese ki ngates aprune ngates yot interest kyo motion ngates drama base ngates debate base ngates ya matlab ki da choga essay writing tang se hindi no dana choga ngates storytelling yot ngati poetry recitation yot urdu quiz choga ngate hindi ngang quiz kyo se odum sare thru ngata de promote ba nyanchin pa
1: bilkul bakshi ju chana baki skatun na sosla dar se tus pe ngata hindi subjects pu jam chika khsan chese ga jaga chang chana ka to yana yari personal la ran jam chika dunya nu challenge cha thu hindi mouse pe jiga bakshi
0: bilkul jo mana har ngata language jo ngat har language alag alag ngata career opportunity jo chen ju ya student is ngati ye hindi ngati kerareng teaching e cha nyanchin academic e cha nyanchin journalism e dakhsa most important ngata translation e chya translation e che ngati language serving ngati alag alag government jese ke office khachi gyo de ngata translation mana zaruri khachan che jya du ne ngata hindi phela ngata jese ke television yod ngati social media yod ya digital platform yod dun sa ngata hindi demand pa ngata increase chen yod de hasap ngata career opportunity sangeng khemot ने हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज जिसमें मिचो चंगाती केरार अपॉर्चुनिटी सांग चचिन दाना चुस खोरा गाती लद्दाख के गवर्नमेंट इस गाता दक्षा हिंदी इम्पोर्टेंस पुछे से गाता 3 साल सों गाता स्कूल सागेनो दियो लागू बसे तो बहुत मतलब चीज़ जो गा गाते हिंदी पु गाते प्रमोट बीन जख्चा जो
1: बिल्कुल बख्शे जो छा गाता हिंदी इंग्लिश कुछ हद तक नतीफ शूनिस काफी दुनिया लोग आता है यार गैस यूं आता हूँ लोग कौन सबसे दुनिया लोग काफी दुन लग आता है छात हूँ लोग अम्मा आता है सरकार चंद स्प्रिंग आता दो थों दो जो कि नतीफ फस कर चुका था जो दक्षिण नरेश मौसम की रीजनल आता अलग अलग डायलेक्ट्स होते रहे चाहे नतीफ फस कर तो खास कर नतीफ पुर्गी जरना एल या नतीफ बल्टी जर जिसका तुम कुल कुल आता स्टोर बचे खास कर नतीफ फस से नतीफ शर्बा ना चूनी इश्किल नजर ना करो चाहे हिंदी ना इंग्लिश हो या बाकी इसका तुम ना यम्बो यम्बो नतीफ नतीफ उदय मादरी जबान पु नतीफ फस कर पु स्ट्रोम से जक्षस पु समझ कर सुन चेस
0: mana lekhmo sawal jin jo du jo je je bana ngati hindi zere daksa english zere ngata daksa ngata ga ngata content creator jo ngati so ma so jo ga ngati matlab ki teachers jo ya ga chu interview che ngati har jaga ngati zyada tar pu ngate hindi na ngata english ngate use bet ngati faskat pu kulyar je den che ni ngata ngati gi faskat pu ngati culture na ngati tradition na ngati snapas atapu ni dun sang na ngati gi dialogue na nyambo ngati bahut hi ngata gehra rishta in jo ya छा नाते की फसकत सुन इम्पोर्टेंस पुंगाता जक पर गोशिन दू आता मिर्जत चुप पर गोशिन यू दू आते जे जब नाते या चो आते दक्षा माता ना आगे आने वाले टाइम में नो मतलब कि दू माना स्टोरी सचिन पर जो है निगाती दू मतलब कि स्नापा सिंह आती आता पुन इसमें चो आता स्टोरी टेलिंग बेत या उदो सो बेत दाना चो खुरा आती दून हर चीज से नाता कम्युनिकेशन जरना हर चीज से नाते इंटरव्यू ताने या डिबेट चिबाना नातीस कहते दू जक से नातीस कहते प्रिजर्व हुआ नाती की डायलेक्ट सुन जैसे ngati shina yot balti yot ngati ga chi shiyot na mala purgi yot odun sangate sa dana tsoga bachi bar gushin pa jwe
1: bilkul a bakshi chana gast ka chi ke ya ga language shik ngate sap na ga to ka ta dang zusta mahmu yo ta jo dun manam jang ta thoma chen su ki ga chi shik sil na ga to ta reading ek sil bat pi adat cho su reading habit cho jo mi ma suna nu lekin daksan ngata od chi su kule ko langa ta jo chana dare si tus pe no ka ska chi khil sap na ga to ga dialect cha gar ka to ta drop box sam na ga to reading habit pu chakchas pu sam ji ka shan chis ba shis
0: reading habit yara zir na ngati mana sabse important in har चीज संगता सॉक चीज सिलना या गाते कोई भी लैंग्वेज का तो सिलना गाते रीडिंग हैबिट पे मन जरूरी है रीडिंग हैबिट पे बेहतर पे यारी प्रोनंसिएशन जरूरत यारी स्पेलिंग एरर जरूरत उदों सख स्टोरी इन चाचिन यार नजर ना जैसे बना रीडिंग हैबिट गाते पहला एक बार गाता फ्रूच गाते गात सोच गाते गच्चे का तो सब ना या गाते दुस बीत राइटिंग बेत मगर की रीडिंग पे मतलब की बार बार बिंदु बना गाती दी रीडिंग हैबिट पे रीडिंग कल्चर पे गाती देन स्टोरी नियोत दी स्टोर चस्प गाता कम छाचिन जो गाते जैसे कि लाइब्रेरी से नुगाते स्टोरी टेलिंग क्यों चा या

0: ngates koi bi novels khyongat oder reading pu ngat reading culture pu ngat es dene no preserve was se jakpur goshin
1: pe bilkul bakhshi ju chana tus pu ngata digital tus sina ju technology ngata lova lo jak pi mata dun no advance cha thong ju yar gya sum cha thong chana dyuni cham ching ngata fan khi cha thong technology dis ka tun preserve jak pe mina bakhshi
0: bilkul ju daksa se zerna daksa se zamana khuran technology zamana in ju ya technology zamane nok ngata ngati faskat po ngata jak pe fela man asan inje yaran zerna jese ki ngate daksa youtube ka record chet ya koi bi ngate daksa ngati la recorder yot ya chi yot ngati snapa ngate skat che ka to ya nyan de ka to ngate jan ngate cassette ngang jak pe do prizda be fela ngata du alag digital platform thop chas ya sa bi fela ngata du ek medium chiltan jin pa jya तो टेक्नोलॉजी का बहुत ही अहम रोल इंजॉय
1: हिंदी दिवस का सल्फोवस से त्रिसो लग चुके नतपिन असदुल्ला खान सरिस
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है 1949 में इसी दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था आज हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही
3: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे
2: श्री शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए
4: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है उसका आत्मबोध होती है हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े
2: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मिजो संस्कृति को संरक्षित रखते हुए हिंदी सीखने का आह्वान किया है उन्होंने आज आइजोल में हिंदी दिवस समारोह में ये बात कही अमरीका के एक विश्लेषक ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र अलग अलग विचारों वाले देशों के बीच आम सहमति बनाने की भारत की क्षमता को दर्शाता है अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कोगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है ब्रिक्स नेताओं ने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा सामाजिक तथा आर्थिक विकास राष्ट्रीय सुरक्षा और सभी देशों के कल्याण की महत्वपूर्ण नींव है नई दिल्ली में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने ऊर्जा बाजारों में स्थिरता सुनिश्चित करने और विभिन्न स्रोतों के जरिए ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह बनाए रखने तथा महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठान को सुरक्षित रखकर ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में इस्तेमाल करने से प्रगति में बाधा आ सकती है सरकार ने कहा है कि वर्ष 2025 में उत्तरी सीमाओं के सामने

0: yang ata ga tsuk sarkari la shik en na ka to de la sung nga ti memang skang ma chut tu zere di kat po nga ti official language chwa na ka to nga tang sa ikan khak du nga ti registered bharat la duk tu ya bharat thogi ka duk tu ya nga ti registered ti nga ti sonche di yulu ni thogi ka duk tu nga ta nga ti skat po cham chi chana nga ti preserve wa chi jak cha nga ti ka chho khak je do program asna ba khano ningis pradya ka jak se yan tang sak pek ti se Portuguese dana muzika fespa base spera tamimina diringates akashvani radio kargilla dr mohammed ali sarlas ke juk sang se khon se yot dikana fespa base entang sak pek tse clip chuge assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: sabasnalla yara uju tseri mozer kaka waqsniana waqs pinse akashvani radio kargilla ske tufila uju tseri mo
1: बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर ऑल इंडिया रेडियो कारगिल इस नादिक का मौका था उस पर तो दिरिंगति हिंदी दिवस का स्पेरा का सिक्किन शाला गति में मौसा का फ्रोच गत
0: शिसानी सब स्नाला गा सेरा गा दिया चिटित पा दरिंग अति सप्टेंबर इल जे चुजबिया लोगं बिंग मा गा ता हिंदी दिवस जेरे मन लख्यों दुख भाग का अंदी स्कोला जी यारे स्पेस्पा बसे मुलना उजु छरी मु
1: बक्षी जु सप्टेंबर 14 हिंदी दिवस जेरे अंदी जग पहुंते हर साल मनाए बन यो हिंदी दिवस को नंगते जनका तो 1953 का ना यानी गता आजादी तब से कई साल के बाद जो 1953 के बाद गते हिंदी दिवस गते मनाई बेने अब दिस को नजर नगतो गते सबसे हिस्ट्री अलता नगतो तारीख अलता नगतो दो आता था उनकी 1947 जन गतम भारत ला गते गेस्ट आजादी तब से अपना देखना दी डिस्कशन पूछेन लोस दी स्पेराउन छेन लोस की हाँ डिबेट एंड डिलिब्रेशन छेन लोस की गा लैंग्वेज पर लगाते ऑफिशियल लैंग्वेज का आंसर है छाना दयानुक तीन साल तकरीबन आजादी गैप ना आजादी थोप सर गैप ना यहाँ देख डिस्कशन सो दे तीन साल लड़ गैप ना 1949 ला 14 सोचो छाना सितंबर 14 1949 लगाते हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडब बसिन और दियू स्क्रिप्ट पगाते देवनागरी स्क्रिप्ट इन कसा छो छाना अब दियानो फेसबुक वसेरा हिंदी स्कॉलर्स मंगमोस या दियानो स्पर खचिक जन लगा तो की लता हिंदी फिगर खते उत पिन लीडर्स खचिक उत पिन जैसे की गाती काका कालेलकर जखन बो मैथिली शर्पन गुप्त जरे हजारी प्रसाद देवी जरे चाना अच्छा गोविंद दास जरे खू इस काफी हद तक दिया ना कोशिश बस और खू रोल पर काफी हद तक इंस्ट्रूमेंटल और खू दी स्ट्रगल वजह का ज्ञाप नगत की अनुशन असेंबली खोरे जरा जनका तो यानी हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रे अडब बस खनिन यहाँ उस पर चिक चेरा जनका तो दी जग पो इंटरेस्टिंग दे करना सुन की यहाँ जनका तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी दी दसरत पा आजादी थोपे फिलहाल बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स उत्मी चिक चेरा जनका तो हिंदी स्कॉलर चाहे खुए इन 50th बर्थडे इन मनसुख 14 सितंबर 1949 ला कोई मिंग पुगाती राजेंद्र सिन्हा जरन छना खुश काफी हद तक कोशिश बखरेन और कोई बर्थडे जा खुरा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 14 सितंबर 1949 ला गाती हिंदी दिवस जरे जखन सोंग सिंजू कसा
0: kani daksa nga ta hindi divas zire nga ti du hindi nga ta official language ang chosin su di nga ta nga tsam chik fan kik du nga ti mimang sladi ka na tsam chik fan kik to bindu
1: bakshis jo hindi is an official language chwe malla bukaran diya sungi agar kato suppose nga ti ka office o da office pe anuk la shika to bacha zin naka to ga document chika to produce bachin naz brichin naka to to office se baad language nar goes chaya ya hindi nir goes ya urdu ya english ya koi bhi language jo hai nga ta ar gosha sung छाना दे टाइम पे आने के रहा दू डिसाइड सॉन्ग की गाते हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज चुए जरे दे मतलब की गा ऑफिशियल गा ला शेड्यूल इतना तो गा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बच्चे ने कहा तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन पहुंची हिंदी ना दन इंग्लिश रखा नहीं हम वो समझो आप स्पर्श जितनी हिंदी यहां राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी नेशनल लैंग्वेज में बल्कि राजभाषा है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज इन गाता दी मिसकंसेप्शन पर कि हिंदी इज राष्ट्रभाषा यानी नेशनल लैंग्वेज इन जरे अभी तक गाता नेशनल लैंग्वेज जरे गा लैंग्वेज स्टेटस मत मौत और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली खोरे संग ड्यू क्लैरिफाई बखरन की ड्यू ऑफिशियल लैंग्वेज इन चेना गाता हिंदी ने मो इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज गाता इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज दखन सुपिक गा लैंग्वेज गाते इन स्टेटस मतन खनिन ड्यू वो देखना सुन की क्योंकि इंडिया डायवर्सिटी अलता ना तो इंडिया ने बहुत सारे रिलीजन बहुत सारे लैंग्वेज रखा ने सो जो छना मल्टी लिंगुअल सोसाइटी उत्पना अच्छा मल्टी रिलीजियस कंट्री उत्पना अति कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने दी चीज पो की हर लैंग्वेज रिस्पेक्ट था और नाता पता कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अनुक एना बहुत सारे स्केड्यूल्स है सो जो देना स्केड्यूल 8th होत नाते देना अनुक 22 लैंग्वेज लगाते देना अनुक जगह था सो देना

0: सिंह अति हिंदी सोचो चाहे हिंदी मेन मांग बाकी बहुत सारे लैंग्वेज जो की जो कि हानी अति एज शेड्यूल बाईस लैंग्वेज अनु खनि सोचो अब दी सबसे फायदा से पोजना अब सबसे गतिस क्योंकि गति ऑडियंस हो सकता है ध्यान गति यंगर जनरेशन चिन्ह और हिंदी गतिस गति करियर रिमिनाल के तो चूज कर दो बचिन का तो अगर एज अ प्रोफेशन या गति करियर का तो गतिस हिंदी खुरियन चोक सरना का तो बहुत ज्यादा स्कोप तुक सीधा क्यों से गति यानी गेस्ट कारगिल इस पर आना का लद्दाख इस पर आना का दक्षिण गति यानी हिंदी इंट्रोड्यूस बस इन चाइना तक स्कूल लेवल के हिंदी इंट्रोड्यूस बस इन यानी कॉलेज लेवल के दक्षिण गतिस हिंदी कोर्स शायद कॉलेज लेवल का यूचा सीन हिंदी कोर्सेज यूथ चाइना गति स्कूल लेवल शुरू बस खन इन बस इन अभी काफी साल हो गए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं गति सकृत की जिन्होंने एमए किया है या पीजी किया पीएचडी भी कर रहे हैं और हिंदी अनुस कुंती डिग्री सक लेने चाहना हो सकता आगे आने वाले टाइम में हिंदी में बहुत ज्यादा इंटेक कैपेसिटी हो सकता है अगर दी हिंदी का तो ध्यान रा करियर का तो चुना का तो
1: बख्शीस का नी अक्सर लैंग्वेज हजू गति ऑफिशियल लैंग्वेज गति भारत तिंगाता हिंदी दू ना चो गति कारगिलो हजू गति लद्दाख गतिस कटप गतिस लेकिन मना अन से गतिस गतिस कटप तंग मन कतो मन क्षलवेग चोशी बसे या गता स्टेज शी कभी न कतो गतिस कटप न गतिस मजर बा या मैंने गतिस उर्दू ची कस पर आता या मैंने इंग्लिश ही कस पर आता ये दी मना चंग फनखेक थो मछा मिन तू गतिस कटप कोलचा
0: अगर हिंदी खुरे पर तो हिंदी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ ऑफिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट बच्चा मिन बल्कि हिंदी जरा पूरा का पूरा कल्चर प्रिजर्व हम बचिन हिंदी लैंग्वेज जरा तो इंडिया क्योंकि मैक्सिमम नॉर्दर्न इंडिया तो सेंट्रल इंडिया का दलता ना ध्यान हिंदी पॉपुलेशन मांगमो सोचू चाहे हिंदी बेल्ट जरूरत चाहना कहीं ना कहीं खो गा यानी रिवाज होना रस्म रिवाज होना रीति होना का तो कहीं ना कहीं हिंदी दी लैंग्वेज के हिसाब पिस्टोली का खोस प्रिजर्व इन शख्सियत सोचो अब गेस्ट कारगिल पर आना का तो गाते लद्दाख पर आना का तो गाता आधी गाते लैंग्वेज हो सोचो जैसे गाते बल्ती हो या पुर्गी हो सोचो दी लैंग्वेज गाते यूज बसे सो भाई दक्षिण गाते गाती कल्चर एंड प्रिजर्व भी मान जरूरी है दक्षिण गाते ना तो बल्ती का या पुर्गी का गाती जर ना तो गाती हिस्ट्री गाते स्ट्रेज में कोशिश में ना तो गाता थो पमित क्योंकि ना लिटरी फिगर में चुक दिसना हिस्टोरियन खासिक में चुक छा ना मजबिस सोचो लेकिन दक्षिण गाता तो मचित की बहुत सारे गाती स्कॉलर्स जो है सोचो कहीं ना कहीं बहुत सारे लैंग्वेज मास्टरी या पीएचडी में नहीं लेकिन पुर्गी दी या बल्ती दी सकाफत उन प्रिजर्व में खूँ दिया नु रिसर्च बहुत कम थो मचिन सोचो स्परच चुदीन की गति लैंग्वेज पे गाता होल्ड मेट गता अति लैंग्वेज पे होल्ड मेट बल्ती या पुर्गी का तो होल्ड का तो मेट ना तो ऑब्वियस बात है खुद का जबिया या खुआ जरबा या खुद का रिसर्च में बहुत ज्ञानमा में सोचो दक्षिण ना गति करगिल यानी रियासत लद्दाख कोरियान बहुत सारे अति हिस्टोरियंस दिया अति अपो खची गयो बहुत सारे फिगर्स की खो दक्षण होल्ड दी चीज सुनी का और कहीं ना कहीं खो अति दी चीज सुन लेन में बल्ती लैंग्वेज दक्षा सपोज गते या पुर्गी लैंग्वेज खुरी करते हो ग्रामर चो चिन्ह तो ग्रामर चो जरूरी है दक्षण गाता ग्रामर है सच में सोचो कहीं ना कहीं गते लैंग्वेज प्रिजर्व में आता स्क्रिप्ट क्वेश्चन चाहे स्क्रिप्ट पो गते अति स्क्रिप्ट यंग क्रिएट बचिन या ऑलरेडी गता आयो स्क्रिप्ट चीज सोचो गति बिथिन स्क्रिप्ट हो दो गते अडॉप बहन चाहे स्प्राय गता स्क्रिप्ट पिका स्क्रिप्ट पो गते लेने दी स्क्रिप्ट पो गते हर स्कूल अनु हर जगह अनु गते दी स्क्रिप्ट पो कोले फ्रुसगा या शेष तांग से दिन का गते फ्रूम लांग गते क्योंकि दिन काफी स्कोप आगे डेफिनेटली सचिन क्योंकि लद्दाख खुरी का तो रिसर्च का तो बच्चा ही नो आज क्या स्क्रिप्ट का होल्ड होता है मान जरूरी सोचो चाहे ना रंग कल्चर प्रिजर्व बचिन्ना या रंग आइडेंटिटी जो चिन्ह का तो गाता मान खासन दुखी गति पुर्गी ने बल्ती का बाकी गति लद्दाख खुरी गा लैंग्वेज जो ना तो दोनों के गाता होल्ड होता है मान जरूरी तो कैसा
1: बख्शीस काका यरिस लेकिन फेसबा बसे मुल्स यंग दाव अखिर का दा चमोल ना यरिस दर यरा ऐसा उस्ताद ची दुख हजू गती फिर बस भी सुन ला यरिस शेल सब इंचियो लो खचिक नमन लगा नीम गती फिर बस भी सुन निका चाम ची असर शिशन दुखा काका गतिस गतिस का चंग खुआ सबक ची तंग ना का तो या गतिस उर्दू ची का या इंग्लिश का तंग ना का तो दो निकाम ची खुआ का नक्स बार दिख थोन दुख देश को ला ची बुलिक मोल ना
0: बख्शीस जो यहाँ दक्ष एनईपी 2020 हिसाब से ना तो न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उदे पॉलिसी हिसाब से 2020 सन एनईपी यो सर गया अपना अब फोकस पो पॉलिसी मेकर से गवर्नमेंट दिया इनकी फ्रून ला कॉन्सेप्ट छुट चुक जा स्पेरेज नहीं जो चिन्ह यहाँ से ना तो कॉन्सेप्ट छुट चुक चेगी ऑनचिन दोनों यहाँ चिक चौचिन मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए सपोज इंग्लिश गति यहाँ से ना तो गैस्ट्री थी लैंग्वेज मैन मना गति जबान मैन मना

सबसे मेन चीज है अंगा तंगा दिसो शोंदे सांगा स्कूल लेवल से था स्कूल लेवल का अंगा सा कुसेले में अंगा स्कूल लेवल से गेंचे चा क्योंकि स्कूल चे एडमिशन जे नेत पर गोस द स्कूल पर रिप्रेजेंट बे फिल्ला छना बेसिक सिकन अंगा से नगा तुंगा ता पहला स्कूल लेवल का अंगा से सीन स्कूल लेवल का अंगा जाफरे स्कूल अंग फर्स्ट क्लास से करना नर्सरी क्लास से करना 12 सुपर क्वालीफाई बसेन छना ओदे टाइम पे अंगा जाफरे स्कूल ऑल देन एस जेफर स्कूल नेशनल गेम्स से चिंदो ओदोनिया ना रिप्रेजेंट बसेन छना दे टाइम उन्यांग अचा दिसिक मतलब क्रेज में चुक हा गेमी मचस दे चना फितो हा दो घंटे चुक शिंग अचा इंडोर स्टेडियम में छेनो चुक दो दिसिक स्ट्रगलिंग पार्टी मासूर जितना गा या ओदी नेशनल प्रोसेसर गया पुना अचा स्ट्रगल बस मोती पांच के गीत पुचा से लांशा दिसिक आसान चिमेन क्योंकि मतलब ओ मोती गीत पो फ्याक बखानो ला पता बाकी फ्याक फखा शिमा बखान ला दिसिक पता चाचा गोरेंगे लांस खान ला छना दियंग मोती सबसे नंगित पु दे मतलब गची फील ला जा स्पोर्ट्स पर्सन ने फील ला मोती नित पुमा जिम्बो जर्सी ने रा जर्ना चा जवन ओ मन जिम्बो हा छना मोती नित पु चाक से छाचास न लबांग तंग मा हिस हालांग छतेन ब्रांग अजर मोंग ना या ब्रांग छते खेर न गच रनिंग बचा प्रैक्टिस बचा नीते प्रैक्टिस पु बस योंग से न जल्दी हम स्कूल तैयारी बचा यूनिफॉर्म प्रेस ता जल्दी जल्दी स्कूल ला छचा स्कूल नीत योंग इन चिन सा जर्स चा छस छ मिचार सुपा ना चारी कने योंग से ना ना से जल्दी वर्दी फुते ना प्रैक्टिस ले छचा प्रैक्टिस तना दे इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस दो घंटा अच्छा प्रैक्टिस सुखशिबा से ना नन खामा यों चा तना खामा पिबुलिक प्रेशर सागेगा देखे नंगा चांग आठ टू निका वर्गा वास दिन आता ट्यूशन लता है दिया वर्गा छह निका ट्यूशन लता है तो सो ट्यूशन रिगजरे तना स्कूल टाइम पहुंचे तो सुखशिबा से फिंग्स देखे ना चाह यूनिवर्सिटी अंगा अति नेशनल से लदा फिल हा देखे ना यूनिवर्सिटी तो एडमिशन देगा एडमिशन था एडमिशन था यूनिवर्सिटी तरफ से यूनिवर्सिटी में रोशन बुजरे हरियाणा यूनिवर्सिटी ची फोन चुंस या देखे ना चाहे एडमिशन पुलेंस देना ग्रेजुएशन लेवल जाने सिले प्रैक्टिस पा बस जाने एग्जाम होना ग्रेजुएशन सो दिया जा मगर दे टाइम पे अंगा चाहना जैसे नेशनल का तो यो ना तंगाची गोई का मतलब दे निगोत सुपर जिम्मेदारी सोशिक अगर तुम यूनिवर्सिटी खेलने जा रहे हो तो दे यूनिवर्सिटी लखेरा मेडल चिखोस्ता जरूरी सुन चा खोज नी का उम्मीद चीज संगा दिया एडमिशन लखेरी दे छाना छन नंगी मा चिक बस संगा प्रैक्टिस बार गोस बार गाना चा छानी साढ़े ग्यारह होने का प्रैक्टिस न लिपचा फिर तो छे का सोस है ना छाना कॉम्पिटिशन यो मा बस पहला तीन सेशन डुल चिन्ह राज है ना मो तुगी पांच टू सात देखा नंगी मा बारह टू दो देखा ना दो हजार सख जो ना शम ना छह टू आठ या छह टू दस दो चौ डुल चिन्ह देख हर खोर पे कामा गाले शिचा मी गंगी दो चार गो गल चा देख स्नान मा ताना ग्रेजुएशन लेवल के फेल छे था समझे टेंशन पो नितो देव बिंदु तो स्ट्रगल रिग्यो छु देखा ना कॉम्पिटिशन हर ही छना स्किन छपना देर गया बंगा ता यंग हा और से ममित समखान ची या फिर गाता स्किन पुदोख खान ची दो तुख शियो नो चुपा दो ना क्यों मुझा खुदा दी चिंग अच्छा मेहनत बस गा चाचा मेडल माथो फीजर खान ची तुख छना दो गंग मा अच्छा सेक्रीफाइस बस बस ताना दी सक पाले तदी का अंगा जनता हाजिर ना पहला पहला अंगा से ना मिल चंग पाते में सुधी बारा गा दी चिंग अप्रिशिएट आमा बस चा दू रियलिटी गिन जब गा कुलिया दी गेम पे तरक्की बस म्यू ला पता सो ओ हा दी गेम उन्हें दी से तरक्की छात सुजरे नी दो पता छेन छेन तना गा गुंदिया स्टेट अवार्ड लेना संग कुछ शर्मा सुख मन शुक्र गुजार घर संग कुछ शर्मा स्पेशल स्पेशली या गाची अंजुमन इनकलाब मेहदी गाची टीम सोचा पूरा दोनों गाती संग कुछ गेंडूंग साक वखा खंगराल साक पा अमेश गेंडूंग साक या दो गांग में थैंकफुल मतलब नी दि चुखला अचीवमेंट उनको दी चिख हौसला अफजाई बस गा दी चिख ग्रैंड वेलकम तंस छाना दूस गा मतलब गा सब माया हाँ गज गिस वाकई में मैंने जिंदगी में कुछ हासिल किया है चौकशी छाना दूस तना दी चौकशी छेन दुख पाया जैसे कि देगा सुसू मैंने मीन ला पता छेद हुआ दू ची के ना सुसू सु ओ दू चो एवॉर्ड हुआ एवॉर्ड पे चीन सो हुआ एवॉर्ड पे आता असली गोल्ड मेडल तंग सिंह सेरी अट्रन के रेडी दू चो गोल्ड मेडल चिक स्टेट अवार्ड तंग सिंह छाना दोस्त फ्रूस अग्रेस छे वतांगस दी अवार्ड प्लेन में फिलंग आचिबार को शिंजरे छाना दो फ्रूट का क्रेज छाना का तो नी फ्रून दी चोक गेम उना यो मा काफी मतलब इजी छचिन चा फ्रून लहंगर छचिन मना बुक छचिन की ओ ओ ताना दियां फ्रूट का आतामा नि समचिन वा दी चोक शिबे फिलंग आस तांगी फ्रूट चिबार को शिंज पहला पहला ना गेम चांग में चुप चा दसा गुन जर जबाते ता दखसा गती पब्लिक पता सो गेम ही समचि फायदा होते मार एक चीज ना जशिन नक्सा एंता सा पता क्रेल बेस पेरा इंडियो गति लदा गचम चि ड्रग्स एडिक्ट सोंग सुख स्टूडेंट सा खास कर यूथ सा मता ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर ल थोन चम चि फ्रुदेंग हा ड्रग्स से मुक्तला सोंग से दो चुक ला सुनिया मा छा चु पे फिलानिंग अति

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन,
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहा है? मिठाई।
3: आरबीआई कहता है
4: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: प्रोत्साहन के लिए, उनको जोड़ने के लिए कि वो जुड़े। कितने साल हो गए हमें आजाद हुए, लेकिन हम फाइलों पे आज भी शायद अंग्रेजों के और अंग्रेजी के ही गुलाम हैं। उस सब से निकलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हिंदी को दिल से अपनाएं और ज्यादा से ज्यादा काम अपना हिंदी में करें। धीरे धीरे करके जुड़िए, इससे हस्ताक्षर कीजिए, एक एक लाइन लिखिए, एक शब्द लिखिए, और ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता जब जुड़ना शुरू होंगे तो लोग अपना कार्य कर पाएंगे। और हमें आशा है कि कश्मीर में भी, वैसे तो बहुत लोग उर्दू और हिंदी मुझे बहने ही लगती हैं, ज्यादा फर्क नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि हमारे आकाशवाणी श्रीनगर के कर्मचारी अधिकारी भी बहुत जल्द राजभाषा को अपने साथ जोड़कर इसी धारा में सम्मिलित होकर अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करेंगे।
1: मजीद खबरों से पहले पेश है ये वक्फा।
2: लोकन हिस फिकर लोकन हिंदान टीवी मुखालिफ भारत अभियान सासी छन टीवी बीमार हिज निशानी ताप सीनस दग थक सित खून यून रोतल अरख मल न रोजन वजन कम गसुन तो बहक तिशी टीवी बीमार हिज अलामत टीवी छुन ला इलाज के तमाम सरकारी मरकजन पर छि टीवी बापत टेस्ट ते इलाज बिल्कुल मुफ्त जानकारी प्रयो नजदीकी हेल्थ सेंटर या टीवी मुक्त भारत अभियान ऐप पेट टीवी हारित मुल्क जेने लोक मफादस मजेरी स्टेट ट्यूबरक्लोसिस सेल डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर।
1: पेश हैं बाकी खबरें। वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने सेहत शोबे में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने की हिदायत दी है। आज श्रीनगर में महकमे के आला अफसरान की एक मीटिंग में उन्होंने हेल्थ सेक्टर के मजमूई कामकाज का जायजा लेते हुए इसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए सलाहकार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लाहाती इकदाम करने पर जोर दिया। उन्होंने इस जिमन में पिछले दो वर्षों के दौरान हासिल किए गए अहदाफ के लिए महकमे के अफसरान और अहलकारों की सताइश की। मीटिंग में वजीर सेहत सकीना इत्तू, वज़ीर-ए-आला के सलाहकार नासिर असलमवानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू, सेक्रेटरी हेल्थ एम राजू और मुख्तलिफ तिब्बी इदारों व मेडिकल कॉलेजों के सरबराहान भी मौजूद थे। श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरियट में आज कई मेंबरान असेंबली, अवामी वफूद और इन्फरादी सतह पर लोगों ने वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और उनकी नोटिस में निजी और अवामी मुतालबात लाए। मुलाकात करने वालों में एमएलए सोनवारी हिलाल अकबर लोन और एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट भी शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने हलकों के कई तरक्याती मंसूबों और अवामी बहबूद से मुतलिक मामलात वज़ीर-ए-आला की नोटिस में लाए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर श्रीनगर के डायरेक्टर एमके वर्मा और डिप्टी डायरेक्टर नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड अशोक कुमार भी वज़ीर-ए-आला से मुलाकात हुए, जिस दौरान इन महकमों के मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राणा ने आज मेंढर में चाजला से रामकुंड सड़क पर मैगडम बिछाने का इफ्तिताह किया। ये प्रोजेक्ट महकमे तामीरात आमा की जानब से 40 लाख रुपए की लागत से अमलाया जा रहा है। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर ने कहा कि मौजूदा सरकार आवाम को बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रखने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वजीर मौसूफ ने सड़कों की तामीर तजदीर और मैगडम बिछाने के दौरान मैयारी मटीरियल इस्तेमाल करने और काम को मुकर्रा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने पर जोर दिया। उमर नौजवान और खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर में पैरा स्पोर्ट्स को फरोग देने और जिस्मानी तौर खास खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के सरकार के आजम का अदा किया है। जेके दिव्यांग वेलफेयर एसोसिएशन के अरकान के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पैरा एथलीट्स को हर सतह पर यकसां मौके फराहम किए जाने चाहिए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने हैदराबाद हॉक्स की जर्सी की नकाब कुशाई की। यह टीम आगरा में 6 अक्टूबर को शुरू होने वाली रेडियंट वर्ल्ड पैरा क्रिकेट लीग में शिरकत कर रही है। वजारत दिफा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरतहाल मुकम्मल तौर काबू में है और यूटी में लोग अब पुरअमन माहौल में जी रहे हैं। साल 2025-26 से मुतलिक जारी की गई अपनी ताजा तरीन रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा है कि अमन सलामती बहाल करने की कोशिशों के नतीजे में यूटी में तशद्दुद में नुमाया कमी, एहतजाजी मुजाहरों में रूकावट और पथराव के वाकयात का खात्मा देखने में आया है। रिपोर्ट में चीन के साथ मजमुई सूरतहाल पर भी रोशनी डाली गई है और कहा गया है कि साल 2025 में शुमाली सरहदों के मुकाबले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तैनाती में कमी देखी गई है, जबकि सियासी, सफारती और अस्करी सतह पर भारत और चीन के दरमियान राबतों ने सरहदों पर मुस्बत पेशरफ्त और इस्तेहकाम की राह हमवार की है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें और आकाशवाणी के दीगर प्रोग्राम आप सिर्फ आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर, वेव्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्रसार भारती की वेबसाइट www.prasarbharti.gov.in के अलावा डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरी ऐप या वेबसाइट प्रसार भारती से वाबिस्ता या मंजूर शुदा नहीं है। रियासी के बकल टनल के नजदीक

एक आज एक मुसाफिर बरदार मिनी बस को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में इसमें सवार दो मुसाफिर मौके पर ही अंजान जबकि पांच दीगर जख्मी हो गए। जख्मी मुसाफिरों को पुलिस और मकामी लोगों ने अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज मुआलजा चल रहा है जबकि दो मुसाफिरों को शदीद जख्मी हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सानहे पर गहरे रंजोगम का इजहार करते हुए महलूकीन के सोगवार कुंभों के साथ ताजियत और हमदर्दी जाहिर की है। वजीर आला ने जख्मी अफराद को मुकम्मल इलाज मुआलजा फराहम करने की हिदायत दी है। इधर बांडीपोरा से हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने खबर दी है कि इलाके के नाले मधुमती से कलूसा के रहने वाले मोमिन अहमद नामी एक 10 साल बच्चे की लाश आज बरामद की गई। मजकूरा बच्चा चार रोज कबल पैर फिसलने की वजह से दरिया में जा गिरा था। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरक्षा अंद्राबी ने आज टंगमर्ग बाबा ऋषि में हजरत बाबा पयामुद्दीन ऋषि रहमतुल्लाह अलैह की ज्यारतगाह पर हाजिरी दी और उन्होंने वहां एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया और ज्यारतगाह की अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट का जायजा लिया। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया गया। इस सिलसिले में हबकदल श्रीनगर में वाका गणपतियार मंदिर में खसूसी प्रार्थना सभा मुनक्कद हुई जिसमें डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू के अलावा श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। श्रीनगर में तीन रोज से जारी कश्मीर थिएटर कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम पजीर हुई। कॉन्फ्रेंस में थिएटर से वाबस्ता मुमताज शख्सियात माहिरीन इल्म अदब मुसन्निफीन फनकारों और सकाफती अमूर से वाबस्ता अफराद ने शिरकत करके कश्मीर की शानदार थिएटर रिवायात के मुस्तकबिल पर तबादले ख्याल किया। कॉन्फ्रेंस के दौरान मुनक्कद की गई नशस्तों में माहिरीन ने कश्मीर में थिएटर के मुस्तकबिल के इम्कानात के मौजू पर तहकीकी मकाले पेश किए। मुकर्ररीन ने थिएटर के लिए इदारा जाती तआवुन तख्लीकी तजुर्बात और पेशवराना सलाहियतों को फरोग देने की जरूरत उजागर की। हल्का इंतखाब बिजबिहाड़ा में दीही तरक्यात महकमे के तहत हो रहे काम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज हल्के के एमएलए डॉ बशीर अहमद वीरी ने टाउन हॉल बिजबिहाड़ा में एक मीटिंग के दौरान सभी इलाकों की यकसान तरक्की की जरूरत उजागर की। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वह मुकर्रर आदाब हासिल करने के लिए काम में सुरत लाएं और लोगों की तरजीहात पर खसूसी तवज्जो मरकूज करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट शमी ओबराय ने मुल्क की 21 मुख्तलिफ रियासतों में यकसां सिविल कोड नाफिज करने के बीजेपी के मुजव्वजा मंसूबे की मुखालफत करते हुए कहा है कि इस इकदाम से भारत के सेकुलर किरदार और मुख्तलिफ मजाहिब के कवानीन और रसूमात पर हर्फ आ सकता है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से कोई भी कदम उठाने से पहले कुल जमाती इजलास तलब किया जाना चाहिए और मामले पर वसी बहसो मुबाहिसा होना चाहिए ताकि सबों की राय हासिल की जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की जरूरत उजागर करते हुए कहा कि अवामी मसाइल को मुअस्सर और बिला रोक टोक हल करने के लिए इस जरूरत को पूरा करना नागुजीर है। पार्टी सदर दफ्तर श्रीनगर पर आज मुख्तलिफ इलाकों से आए अवामी वफूद से तबादले ख्याल करते हुए सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरबराही वाली सरकार अवाम की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है और लोगों के मसाइल और मुतालबात तरजीही बुनियादों पर हल करने की सभी कोशिशें बरोएकार लाई जा रही हैं। कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने कहा है कि उनकी जमात रामबन के लोगों को दरपेश मसाइल और दीगर मामलात असेंबली के आइंदा इजलास में उठाएगी। ये बात उन्होंने आज रामबन में अवामी वफूद से बातचीत के बाद कही। इस दौरान जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने डोडा में पार्टी लीडरों की कई मीटिंगों में पार्टी की सरगर्मियों और आइंदा के प्रोग्रामों के लिए तैयारियों का जायजा लिया। दरियासना पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा इजलास के कामयाब इनकाद पर इत्मीनान और खुशी का इजहार किया है। मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने शोपियान अनंतनाग कुलगाम और सोपोर में 6 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद कर ली गई है। इस दौरान पुलिस ने बूनियार बारामुल्ला में 2 कनाल अराजी पर खुदराव बंग को तबाह कर दिया है। उधर एसएसपी कुलगाम ने जिला पुलिस अफसरान की एक मीटिंग में जिले में मजमूई सूरतहाल का जायजा लिया। उन्होंने अमन में रखना डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। क्रोहन कल्चरल फोरम क्रीरी के एहतमाम से आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्रीरी में एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई जिसमें उदबा शोरा और आम लोगों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान नूरुद्दीन हौश की किताब सियाह वावलिसमंस और मारूफ अदीब व शायर सादुद्दीन सादी की कुलियात कदूस मीर कुदसी की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। मौसम।

0: महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 30.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप सुनिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: तेरी वाईफाई है ना,
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आदाब, आज का तबसरा लेकर हम हाजिर। नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को मुनक़दा ब्रिक्स सरबराह इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है और इसके साथ ही भारत की एक अहम सिफारती जिम्मेदारी भी मुकम्मल हुई है। ये इजलास न सिर्फ भारत की मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी थी बल्कि इससे ये बात भी वाजह हो चुकी है कि ब्रिक्स ममालिक अब भारत को एक ताकत के तौर पर तस्लीम करते हैं और इस तरह के इजलास यहां मुनक़द होना एक बहुत बड़ी सफारती जीत है। दो रोज तक दुनिया की तवज्जो नई दिल्ली पर मरकूज रही जहां ब्रिक्स के रुकन ममालिक ने आलमी मईशत, अमन व सलामती, दहशतगर्दी, तिजारत, सेहत, माहौलियात, नई टेक्नोलॉजी और आलमी निजाम में इस्लाहात समेत कई अहम मौजूद पर तबादले ख्याल किया। इजलास का सबसे अहम नतीजा नई दिल्ली एलामिया की मंजूरी है जिस पर रुकन ममालिक ने इत्तेफाक राय किया। ऐसे वक्त में जब दुनिया मुख्तलिफ सियासी, माशी और अस्करी तनाजियात से दो चार है, मुख्तलिफ मफादात रखने वाले ममालिक का एक मुश्तरका एलामिया और इस पर मुत्तफिक होना अपनी जगह एक अहम सिफारती पेशरफ्त करार दिया जा सकता है। जैसे कि हिन्दुस्तान पहले ही दहशतगर्दी के खिलाफ मौकिफ सख्त रखता है और हर किस्म की दहशतगर्दी को आलमी अमन के लिए खतरा करार दे चुका है, इसलिए ब्रिक्स ममालिक ने भारत के इस मौकिफ की भी ताहिद की। इस इजलास की अहमियत सिर्फ इस वजह से नहीं कि ब्रिक्स के सरबराहान एक जगह जमा हुए बल्कि इसलिए भी है कि ये तंजीम अब अपनी इब्तदाई शक्ल से कहीं ज्यादा वसी हो चुकी है। आज ब्रिक्स में 11 मुकम्मल रुकन हैं और इसकी मजमुई आबादी दुनिया की तकरीबन निसफ आबादी के बराबर है। आलमी मईशत और तिजारत में भी इस ग्रुप का वजन मुसलसल बढ़ रहा है। यही वजह है कि ब्रिक्स को अब महज चंद उभरती हुई मईशतों का इकतसादी फोरम समझना शायद दुरुस्त नहीं होगा। यह आलमी जनूब की एक ऐसी इज्तिमाई आवाज बनने की कोशिश कर रहा है जो आलमी फैसलों में तरक्की पजीर ममालिक के मफादात को ज्यादा मौसर अंदाज में सामने ला सके। एलामिया में अक्वामे मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों में इस्लाहात की जरूरत भी उजागर की गई है। मौजूदा आलमी निजाम कई दहाइयां कबल के हालात के मुताबिक तश्कील दिया गया था जबकि आज दुनिया की माशी और सियासी हकीकतें बड़ी हद तक तब्दील हो चुकी हैं। माशी मैदान में भी इजलास के नतायज काबिल तवज्जो हैं। ब्रिक्स ममालिक ने बाहमी तिजारत में मकामी करेंसियों के इस्तेमाल, सरहद पार अदायगियों के निजाम को बेहतर बनाने और माली तआवुन बढ़ाने पर जोर दिया है। ताहम इस मामले में भी हकीकत पसंदाना अंदाज इख्तियार करना जरूरी है। आलमी मालियाती निजाम में फौरी और मुकम्मल तब्दीली आसान नहीं, लेकिन अगर ब्रिक्स ममालिक मरहलवार अपने दरमियान अदायगियों के निजाम को ज्यादा आसान, महफूज और मौसर बनाते हैं तो इससे बाहमी तिजारत को फरोग मिल सकता है और मुस्तकबिल में आलमी मालियाती निजाम में एक मुतबादिल रास्ते की गुंजाइश पैदा हो सकती है। माहिरीन ने इस इजलास के इनेकाद को भारत के विश्व गुरु बनने के विजन के लिए भी अहम करार दिया है क्योंकि भारत का जो हदफ है उसमें अकेले नहीं चला जा सकता बल्कि बड़े और दीगर ताकतवर ममालिक को साथ लेकर ही इस हदफ को हासिल किया जा सकता है। आज दुनिया पहले ही माशी गैर यकीनी, तवानाई के मसाइल, जंगों और रसद के निजाम में रुकावटों से मुतासिर है। ऐसे माहौल में तिजारत को सियासी दबाव का जरिया बनाने के बजाय तआवुन और बाहमी मफाद की बुनियाद पर आगे बढ़ाने की जरूरत है। ब्रिक्स का मौकफ इसी वसी तरबहस का हिस्सा है कि आलमी मईशत में तरक्की पजीर ममालिक को अपनी जरूरियात और तरजीहात के मुताबिक ज्यादा मौके मिलने चाहिए। इजलास में आलमी तिजारत पर आयद एक तरफा पाबंदियों और तिजारती रुकावटों पर भी तश्वीश जाहिर की गई। इसके साथ साथ इस इजलास का एक अहम पहलू सेहत, तालीम, माहौलियात और नई टेक्नोलॉजी में भी تعاون ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال، صحت کے شعبے میں تعاون، ذہنی صحت کے لیے مراکز کے قیام، ابتدائی تعلیم، فنی تربیت، زرعی ترقی، توانائی اور ماحولیاتی پائیداری جیسے شعبوں کو اعلامیہ میں جگہ دی گئی ہے۔ یہ پہلو اس لیے بھی اہم ہے کہ کسی بھی عالمی تنظیم کی کامیابی کا اندازہ

मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्स, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्स, 199.4 मीटर और न्यूज ऑन एआईआर एप्स पर हम आकाशवाणी करगिल से बोल रहे हैं। शब के 8 बजे हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद फौजी भाइयों, आकाशवाणी करगिल से मैं हूं अब्बास यावर आप तमाम सामीन को बहुत मोहब्बत के साथ सलाम पेश करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में हम सुनेंगे मोहब्बत, याद, एहसास और जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे खूबसूरत फिल्मी नगमे जिनकी धुन भी दिल को छूती है। तो आइए मौसीकी के इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं फिल्म हम तुम से। नगमनिगार है परसून जोशी और मौसीकी जतिन ललित, गुलकार है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो। मोहब्बत में कभी दो लोग एक दूसरे के करीब होते हुए भी अपने बात लफ्जों में बयान नहीं कर पाता और कभी एक गाना वो सब कुछ कह देता है जो दिल कहना चाहता है।

आप सुन रहे थे फिल्म हम तुम का खूबसूरत मकमा, जिसे आवाज दी थी अलका याग्निक और बाबल सुब्रियो ने। और अब अगला नगमा एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान लेकर आता है जिसमें वक्त की सिर्फ चंद लम्हे भी पूरी जिंदगी की याद बन जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में मिलने वाले चंद लम्हे इतने खास होते हैं कि इंसान इन्हें पूरी उम्र अपने दिल में संभाल कर रख देता है। कुछ लम्हे गुजर जाते हैं मगर याद नहीं जाए, कुछ लम्हे गुजर जाते हैं मगर यादें नहीं जाते हैं, कुछ लोग दूर हो जाएं मगर दिल से नहीं जाते। तो आइए इन्हें हसीन यादों के साथ सुनते हैं फिल्म वीर ज़ारा का ये नगमा।

ये गीत हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में वक़्त चाहे कितना भी मुख्तसर क्यों न हो, अगर इसमें मोहब्बत शामिल हो तो वो लम्हा हमेशा के लिए यादगार बन जाता है। और अब भारी है एक ऐसे नगमे की जो सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं करता बल्कि जिंदगी की हकीकत भी समझा जाता है। जिंदगी में हर लम्हा एक नया मौका देती है, लेकिन आने वाला कल हमारे इख्तियार में नहीं। इसीलिए आज के लम्हे को मोहब्बत, खुशी और अपनों के साथ जीना चाहिए। जो लम्हा आज मिला है इसे जी भर के जी लीजिए। जो लम्हा आज मिला है इसे जी भर के जी लीजिए, क्या खबर फिर ये हसीन लम्हा हो ना हो। तो समाअत फरमाए सोनू निगम की दिल को छू लेने वाली आवाज में ये नगमा कल हो ना हो फिल्म से।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों,
1: मैं यहाँ हूँ।
2: तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना था।
1: दिमाग चार्ज कर अपना।
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा आम हो जाएगा।
1: देखा
2: अब्बू, रुकिए मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
3: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना।
1: बुद्धू सुधर जा।
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
3: RBI कहता है
4: करो नई शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
5: आपने सुना कल हो ना हो फिल्म का ये नगमा, आवाज दी थी सोना निगम ने और मौसीकी तरतीब दी शंकर एहसान लॉय ने, और इस गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने। समीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नगमे की तरफ। ये गीत मोहब्बत के इस एहसास की तर्जमानी करता है जब कोई शख्स हमारे दिल में इस तरह बस जाए कि इसकी मौजूदगी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत मुकाम शायद वो है जब महबूब सिर्फ यादों में नहीं बल्कि इंसान के दिल की धड़कनों में शामिल हो जाए। दिल की धड़कनें बनकर जो दिल में उतर जाए, दिल की धड़कनें बनकर

0: 90 ساپاین تیز پروگرام یعنی نوت پینگی یلچ موش مک می نیفیا میری می ویکا دیو آکاش وانی کرگلین وقت سپوت سانی تو سو تور کت نامنیت جب چو جاگا چندو کسطا آچاس آکاش وانی دلی نا ہندی انگریزی تو نا اردی خبرون ریلے بیت ریلے لا ڈاؤں بازاد
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की, कहा भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। अमरीकी विश्लेषक ने कहा दिल्ली घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता को दर्शाता है। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह है, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की और देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश राष्ट्राध्यक्षों की

0: उपस्थिति से दुनिया ने भारत के मजबूत नेतृत्व और विभिन्न देशों को एक मंच पर लाने की क्षमता देखी।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा था जब दो बड़े संघर्ष जारी हैं, गहरे मतभेद हैं और विभिन्न देशों के विचारों तथा हितों में काफी टकराव है। इसके बावजूद हम ऐसे वक्तव्य पर सहमति बनाने में सफल रहे जिस पर सभी ने सहमति जताई। इस वक्तव्य में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, दीर्घकालिक आपसी समझ, वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू प्रवाह, ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति तथा नागरिकों और बुनियादी ढांचे की सुरक्षा का आह्वान किया गया है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सम्मेलन में 11 सदस्य देशों, 10 साझेदार देशों, 4 क्षेत्रीय संगठनों और 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल 32 प्रतिनिधिमंडल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि वैश्विक ध्रुवीकरण के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष जैसे सबसे जटिल मुद्दे पर भी आम सहमति बनना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट रूप से माना है कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य आपराधिक कृत्य है।
1: ब्रिक्स का रुख स्पष्ट था, आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक माना जाएगा। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम हमले की अस्वीकार्यता को स्पष्ट रूप से मान्यता दी। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। साथ ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर बल दिया।
0: नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल समापन के बाद समूह में भारत के नेतृत्व की कई सदस्य देशों ने तारीफ की है। भारत की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 2 दिन का सम्मेलन कल संपन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: ब्रिक्स में 11 बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% हिस्सा हैं। ब्रिक्स देशों ने शनिवार को सम्मेलन में एकमत से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित दुनिया के नेता शामिल हुए। नई दिल्ली घोषणा पत्र में भारत की अध्यक्षता की तारीफ की गई और सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत सरकार और लोगों की प्रशंसा की गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स अध्यक्ष के तौर पर भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने बेहद सफल सम्मेलन आयोजित किया है। चीन की सरकारी मीडिया और नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को ग्लोबल साउथ देशों के बीच बेहतर गुणवत्ता के सहयोग और एकजुटता के लिए सकारात्मक कदम बताया। रूस ने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ समावेशी विकास उन्मुखी साझेदारी के लिए मॉस्को के समर्पण की फिर से पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने भी भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की तारीफ की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी नई दिल्ली घोषणा पत्र की तारीफ की है। अमेरिका के एक विश्लेषक ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को बहुत सफल बताया है। अटलांटिक काउंसिल में दक्षिण एशिया मामलों के वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ये घोषणा पत्र भारत की बढ़ती वैश्विक समन्वय क्षमता और ब्रिक्स की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति, विजन महासागर और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में वियतनाम प्रमुख भागीदार है। नई दिल्ली में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 19वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आसियान के साथ व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे में वियतनाम महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी है। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि मुजफ्फरपुर ढालकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और टनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक विद्युत आपूर्ति को स्वीकृति दी गई है। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में बाढ़ से नेपाल में जल विद्युत अवसंरचना को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उसकी घरेलू बिजली निर्माण क्षमता कम हो गई है और बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता हो गई है। सोमवार से मिली मंजूरी से नेपाल को मुश्किल समय में बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के बीच करीबी और लंबे समय से चले आ रहे ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि भारत नेपाल की सहायता करने और ऊर्जा क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी को दिखाती है। श्री शाह ने ये बात आज नवी मुंबई में दो दिन के हिंदी दिवस और छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कही।
1: भारतीय साहित्य एक विकसित सतदल कमल की तरह है, जिसकी प्रत्येक पंखुड़ी हमारी प्रादेशिक भाषाएं, किसी भी एक पंखुड़ी को नष्ट होने से कमल का सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि प्रादेशिक भाषाएं रानी बनकर प्रांत में विराजमान रहे और इन सभी भाषाओं के बीच में हिंदी मध्यमणि बनकर इस सतदल कमल का सौंदर्य बढ़ाती रहे।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को पूरा सम्मान और गरिमा देते हुए हिंदी को केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: इस अवसर पर राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 11 संस्थाओं और लोगों को सम्मानित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदी दिवस के अवसर पर आज जन सूचना सेवा शुरू करने की घोषणा की। इस सेवा के अंतर्गत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही करीब 15 से 30 मिनट की अवधि के हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे। राजस्थान में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। आज राज्य के 10,245 वार्डों के लिए मतगणना हुई। इनमें 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। भाजपा ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भीलवाड़ा नगर निगमों में बहुमत हासिल कर लिया है, जबकि अलवर में वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस को बहुमत मिला है और अजमेर तथा पाली में पार्टी आगे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और विवादित लेनदेन पर रोक के संबंध में नई रूपरेखा का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत बैंक पूरे अकाउंट के बजाय सिर्फ विवादित लेनदेन की राशि को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। ऐसा तभी किया जा सकेगा जब 1,000 रूपये या उससे अधिक के असामान्य अंतरण को म्यूल अकाउंट या साइबर फ्रॉड से जुड़े होने की आशंका हो। मसौदा निर्देश अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, लेकिन बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 40 से अधिक देशों के 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और प्रतिभागी भाग लेंगे। सेमिकॉन इंडिया भारत का प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उरुग्वे के विदेश मंत्री मारियो लुबेत्किन ने भारत और मर्कोसुर के बीच तरजीही व्यापार समझौते के विस्तार के लिए बातचीत शुरू करने की घोषणा की है। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान समझौते में आपसी हित के क्षेत्रों को शामिल करने पर सहमति प्रकट की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता व्यक्त की है। परिषद ने कहा कि प्रदर्शनों को अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिससे अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है और व्यापक क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: परिषद ने चेतावनी दी कि सार्थक बातचीत में किसी भी प्रकार की और देरी से जनता में असंतोष, अविश्वास और अस्थिरता और बढ़ सकती है। परिषद ने बाघ जिला परिषद के सदस्य जावेद आरिफ अब्बासी की गिरफ्तारी पर भी चिंता प्रकट की। परिषद ने कहा है कि सार्वजनिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार है। परिषद ने आरिफ अब्बासी पर किसी भी आरोप को पारदर्शी कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने का आह्वान किया और कहा कि यदि उनकी हिरासत के लिए कोई स्पष्ट कानूनी आधार नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की है कि गुजरात ने मिस्टी योजना

0: के अंतर्गत कच्छ में 27,000 हेक्टेयर में मैंग्रोव पौधे लगाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पर्यावरण मंत्री ने जाखौ स्थित वैज्ञानिक नर्सरी का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और चीता परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के लिए 33 निगरानी और बचाव वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और अब बात मौसम की। गुजरात में आज तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य में भावनगर के वल्लभीपुर में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जबकि आनंद के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश से आम जनजीवन पर असर पड़ा। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया। इस बीच वाहन चालकों को भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राज्य में सीजन की औसत 80% बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश के कारण राज्य के 35 डैम हाई अलर्ट पर है। दूसरी ओर बारिश के कारण लंबे ब्रेक के बाद खरीफ की फसल को नया जीवन मिला है। मनोज सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कल तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि केरलम, माहे, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल इसी तरह के मौसम की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। देश भर में आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से गणेशोत्सव पारंपरिक तरीके से मनाने और प्रदूषण कम से कम करने की अपील की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। भक्तों ने प्रार्थना, आरती, भक्ति गीतों और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ भगवान गणेश का स्वागत किया। मुंबई में लालबाग सराजा, गणेश गली, तेजुकाया और जीएसपी जैसी मशहूर मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ और ट्रैफिक को संभालने के लिए पुलिस, रेलवे और बस ने खास इंतजाम किए हैं। कई जिलों में एक गांव एक गणपति पहल को अपनाया गया। इस साल शोर शराबे वाले प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की सफलता की सराहना की। कहा, भारत ने मजबूत आयोजन क्षमता प्रदर्शित की। वैश्विक नेताओं ने विकासशील देशों के बीच सहयोग मजबूत करने और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, भारत की संस्कृति और साहित्य कमल की तरह हैं, जिसकी हर क्षेत्रीय भाषा उसकी एक पंखुड़ी कुदरत दिखाती है। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में जल विद्युत आपूर्ति में आई कमी के बीच दिसंबर के अंत तक प्रतिदिन 18 घंटे बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद ने क्षेत्र में लंबे समय से जारी विरोध प्रदर्शनों और अशांति पर चिंता प्रकट की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protest and unrest in the region. And Ganesh Chaturthi been celebrated across the country with grandeur, devotion and festive gaiety. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today lauded the successful conclusion of the BRICS Summit 2026 in New Delhi, saying that the world saw the strong convening power of India as most of the heads of state were present to represent the countries. Talking to the media, Dr. Jaishankar said that it is important to recognize that this BRICS summit was taking place in a very polarized world.
4: BRICS summit was taking place in a very polarized world, where there are two major conflicts, where there are very strong opinions and interests. Even in the

0: sold and public idols were installed, with the One Village, One Ganpati initiative adopted in several districts. This year, the focus is on traditional celebrations and reducing noise pollution. Health, blood donation, cultural and welfare programs are also being organized alongside the festivities. Madhuri Pange, Akashwani News, Mumbai.
1: The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Haryana, Chandigarh and Delhi tomorrow. Similar weather conditions also expected to prevail over Kerala, Mahe, Punjab, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal for tomorrow. The Met Department said the thunderstorms and lightning conditions will continue over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, Jammu and Kashmir, Ladakh, Jharkhand, Odisha and Rajasthan to the next 2 to 3 days. In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second T20 International at the Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. The match will begin at 7:30 p.m. Indian Standard Time. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar hails successful conclusion of BRICS Summit in New Delhi, says India showed strong convening power. Global leaders praise BRICS Summit for strengthening cooperation among developing nations and advancing priorities of Global South. US-based analyst says New Delhi declaration reflects India's ability to build consensus. India approves 18-hour power supply to flooded Nepal till December end amid hydropower crisis. Human Rights Council of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir expresses concern over prolonged protests and unrest in the region. Ganesh Chaturthi has been celebrated across country with grandeur, devotion and festive gaiety. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Zameer Razvi se khabrein suniye. सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद की तारीफ की है उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहिरा किया है आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है अमरीका में मुकीम तज्जिया निगार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है भारत ने पनबिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासिरा नेपाल को दिसंबर के आखिर तक 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है इंसानी हकूक से मुतालिक पाकिस्तान की काउंसिल ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से जारी मुजाहिरों और बदमनी पर तशवीश का इजहार किया है और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है अब खबरें तफसील से वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग 2026 के कामयाब इख्तिताम की सताइश की उन्होंने कहा कि दुनिया ने भारत की मौसर सिफारतकारी और क़यादत का बखूबी मुशाहिदा किया क्योंकि ज्यादातर ममालिक के सरबराहान अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी के लिए मीटिंग में मौजूद थे सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ब्रिक्स सरबरा मीटिंग ऐसे वक्त मुनक़िद हुई जब दुनिया में इख्तिलाफात और ग्रुपबंदी मौजूद है इसके अलावा दुनिया में दो बड़े तनाज़ात के साथ बड़े पैमाने पर इख्तलाफ राय और मफादात भी कारफरमा हैं उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक अमन व सलामती इस्तेहकाम तवील मुद्दती बाहमी मफाहमत आलमी तिजारत में आसानी सप्लाई चेन तवानाई और शहरियों नीज सिविलियन बुनियादी ढांचे के तहफ्फुज़ के हवाले से एक मुश्तरका बयान पर इत्तेफाक करने में कामयाब रहे डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि मीटिंग में 32 वफूद शरीक हुए जिनमें 11 रुकन ममालिक 10 शराकत दार ममालिक 4 इलाकाई तंजीमें और 7 बैन अल-अक़वामी तंजीमें शामिल थीं वजीर खारजा ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि दहशतगर्दी की कोई भी कार्रवाई एक मुजरिमाना अमल है उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स ने वाज़ेह तौर पर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया नई दिल्ली में 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनेकाद पर कई रुकन ममालिक ने भारत की ब्रिक्स क़यादत की तारीफ की है भारत की सदारत में मुनक़िद हुई दो रोज़ा सरबरा मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ कौमी राजधानी में इख्तिताम पज़ीर हुई इस दौरान हफ्ते के रोज़ ब्रिक्स ममालिक ने मुत्तफ़िका तौर पर नई दिल्ली ऐलामिया 2000

0: 20 अपनाया। इस सरबरा मीटिंग में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग समेत कई आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के दौरान जनूबी अफ्रीका, रूस, चीन, ब्राजील और मुत्तहदा अरब इमारात ने ब्रिक्स में इश्तराक मुस्तहकम करने और आलमी खत्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने की भारत की कोशिशों का खैर मकदम किया। जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने भारत की ब्रिक्स सदारत की तारीफ करते हुए कहा कि नई दिल्ली ने कामयाब तरीके से सरबराह मीटिंग की मेजबानी की और इत्तफाक राय पर पहुंचने से मुतालिक खदशात के बावजूद नई दिल्ली आलामी पर रुकन ममालिक को आमादा करने पर कामयाब रहा। चीन के सरकारी मीडिया और क्यादत ने नई दिल्ली आलामी को आलमी खत्ते जनूब के मुल्कों में आला दर्जे के इश्तराक और यकजहती से मुतालिक मुस्बत कदम करार दिया। रूस ने आलामी पर मास्को के अज़्म को दोहराते हुए ब्रिक्स हलीफ मुल्कों के साथ शमूलियाती और तरक्की पर मरकूज साझेदारी के तई अहदबस्गी का इजहार किया। अमरीका में मुकीम तजिया निगार ने 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की भारत की मेजबानी को कामयाब करार देते हुए कहा कि नई दिल्ली आलामी से मुख्तलिफ नजरियात के हामिल मुल्कों के दरमियान इत्तफाक राय कायम करने की नई दिल्ली की सलाहियत की अक्कासी होती है। न्यूज डेस्क से स्वाति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी आइंदा बुध के रोज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2026 के पांचवें एडिशन का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम में 600 से ज्यादा नुमाइशकार, 300 बैनुल अक्वामी कंपनियां और 40 से ज्यादा ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। नुमाइश में 6 ममालिक के पवेलियन, 12 रियासती हुकूमतों के पवेलियन के अलावा एक खसूसी स्टार्टअप पवेलियन भी होगा। सेमीकॉन इंडिया भारत की सबसे अहम सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस और नुमाइश है, जिसका इनेकाद मुश्तरका तौर पर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत और सेमी करते हैं। ये प्रोग्राम आलमी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इको निज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का अहम जरिया है, ताकि ताउन, जिदत तराजी, मैन्युफैक्चरिंग, सरमायाकारी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत तैयार करने को फरोग दिया जा सके। 3 रोजा कॉन्फ्रेंस में आला सतह के कलीदी खुतबे, पैनल मुबाहिसे और हिकमत अमली से मुतालिक अहम इजलास होंगे। इनमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में उभरते हुए रुझानात और अहम मौजूआत, खसूसी तौर पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये प्रोग्राम भारतीय और बैन अलाक्वामी कंपनियों को कारोबारी शराकतदारी, सरमायाकारी के मौके, टेक्नोलॉजी में ताउन और सप्लाई चेन के रवाबित दरियाफ्त करने का अहम मौका फराहम करेगा। इससे भारत की हैसियत एक काबिल एतमाद आलमी सेमीकंडक्टर शराकतदार के तौर पर मजीद मुस्तहकम होगी। हुकूमत ने नेपाल बिजली अथॉरिटी को इस साल 31 दिसंबर तक रोजाना 18 घंटे बिजली बरामद किए जाने की मंजूरी दी है। वजारत बिजली के मुताबिक नेपाल को मुजफ्फरपुर धलकेबार लाइन के जरिए 600 मेगावाट तक और तनकपुर महेंद्रनगर लाइन के जरिए 54 मेगावाट तक बिजली फराहम की जाएगी। हालिया सैलाब से नेपाल के पन बिजली बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बायस मुल्क के अंदर बिजली पैदा करने की सलाहियत कम और बिजली की इजाफी जरूरत पैदा हो गई है। वजारत ने कहा कि इस मंजूरी से नेपाल को मुश्किल हालात में अपनी बिजली की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और भारत और नेपाल के दरमियान देरीना तवानाई ताउन मजीद मुस्तहकम होगा। वजारत ने मजीद कहा कि भारत नेपाल की मदद के लिए और तवानाई के शोबे में दोतरफा ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि भारत की सकाफत और अदब कमल के फूल की मानिंद है, जिसकी हर पंखुड़ी मुल्क की मुख्तलिफ इलाकाई जबान की नुमाइंदगी करती है। उन्होंने कहा कि अगर एक भी पंखुड़ी जाये हो जाए तो पूरे कमल की खूबसूरती कम हो जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी को मरकजी रोल अदा करना चाहिए, ताहम तमाम इलाकाई जबानों को भी मुनासिब इज्जत, वक़ार और एहतराम दिया जाना चाहिए। जनाब शाह नवी मुंबई में 2 रोजा हिंदी दिवस 2026 और 6 अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे।
2: भाषा किसी भी समाज की स्मृति होती है, उसका आत्मबोध होती है। हिंदी ने इस विविधता के बीच संवाद, संपर्क और समन्वय की भाषा के रूप में देश के विभिन्न वर्गों और समुदायों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी का विकास भी तभी सार्थक है जब सभी भारतीय भाषाओं के सम्मान, संरक्षण और संवर्धन के साथ आगे बढ़े।
0: मरकजी वजीर दाखिला ने कहा कि अगरचे भारत में बहुत सी जबानें और बोलियां हैं, लेकिन भारत का जज्बा और मुल्क की आवाज एक रहनी चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और वियतनाम के उनके हमनसब ली हुई ट्रुंग ने आज

0: नई दिल्ली में मुश्तरका तौर पर 19वें भारत वियतनाम मुश्तरका कमीशन मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि नतायज पर मरकूज इस मीटिंग में भारत और वियतनाम की सियासी, दिफाई और सलामती से मुतालिक तआवुन को मजबूत बनाने और भारत में तैयार करदा दिफाई साजो सामान की फराहमी बढ़ाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई चेन के उमूर पर भी तामीरी बातचीत की और बाजार तक रसाई को मजीद वसत देने के बारे में तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की समंदरी मसनूआत, जरई मसनूआत और अद्वियात के शोबों में भी तआवुन और बाहमी तिजारत पर तबादला ख्याल किया गया। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल और जमहूरिया यूरागुए के वजीर खारजा मारियो लुबेटकिन ने भारत और मर्कोसुर के दरमियान तरजीही तिजारती समझौते को वसत देने के लिए मुजाकरात शुरू करने का ऐलान किया। दोनों वजीरों ने मौजूदा समझौते को बाहमी दिलचस्पी के मजीद शोबों तक वसत देने पर इत्तेफाक किया। इसका मकसद भारत और मर्कोसुर के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मजीद वसत देना और दोनों फरीकों के निजी शोबों के लिए ज्यादा फवायद और नए मौके फराहम करना है। राजस्थान में हुक्मरां भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में होने वाले शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में मजमूई तौर पर बढ़तरी हासिल कर ली है। आज रियासत के 10,245 वार्डों के लिए वोटों की गिनती हुई। शहरी मुकामी बल्दियाती इदारों में 10 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 47 म्यूनिसिपल काउंसिल और 252 म्यूनिसिपैलिटीज शामिल हैं। बीजेपी ने जयपुर, कोटा, उदयपुर और भिलवाड़ा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वाज़े अक्सरियत हासिल कर ली है, जबकि अलवर में भी वो आगे चल रही है। बीकानेर में कांग्रेस ने वाज़े अक्सरियत हासिल की है, जबकि अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे है। भरतपुर में आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आज़ाद उम्मीदवारों ने 65 में से 38 वार्ड्स में जीत हासिल की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर POJK की इंसानी हकूक काउंसिल ने खित्ते में खासतौर पर रावलकोट और पुंछ और सुधनूती जिलों में तवील अरसे से जारी एहतजाज और बदमनी पर तश्वीश का इजहार किया है। इंसानी हकूक काउंसिल ने कहा कि मुजाहिरों को अब 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है और पूरा खित्ता मुतासर हो रहा है। काउंसिल ने खबरदार किया कि बामानी मुजाकरात में मजीद ताखीर से अवाम में मायूसी पैदा हो सकती है, नीज अदम एतमाद और अदम इस्तेकाम मजीद गहरा हो सकता है। काउंसिल ने पाकिस्तानी हुकाम और तमाम मुतालिका फरीकों से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर बामानी और नतीजा खैज मुजाकरात शुरू करें, सब्र तहमुल का मुजाहरा करें और पुरमन व जमहूरी हल तलाश करें। हुकूमत ने कहा है कि फौज की मुसलसल कोशिशों की वजह से जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरी तरह काबू में है। 2025-26 की अपनी हालिया सालाना रिपोर्ट में वजारत दिफा ने कहा कि फौज की इन कोशिशों की वजह से तशद्दुद और मुजाहरों में कमी आई है और पथराव का खात्मा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया तब्दीली आई है। गणेश चतुर्थी का त्यौहार आज मुल्कभर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। भगवान गणेश की पैदाइश की याद में मनाया जाने वाला यह त्यौहार दानाई, खुशहाली और नेकबख्ती की अलामत है। इसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है। इस मौके पर 10 रोजा तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसके दौरान लोग भगवान गणेश की मूर्तियां अपने घरों में नस्ब करते हैं और इसकी पूजा करते हैं। सदर जमहूरी द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से आलूदगी कम करते हुए रिवायती अंदाज में गणेश उत्सव मनाने की अपील की है। जनाब फडणवीस मुंबई में अपनी सरकारी रिहायशगाह वर्षा में भगवान गणेश की मूर्ति नस्ब करने और उसकी पूजा करने के बाद नामानिगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुंबई समेत महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। तफसील हमारे मुंबई के नामानिगार से।
1: महाराष्ट्र भर में 10 रोजा गणेश उत्सव आज से शुरू हो गया है। अकीदतमंद भगवान गणेश का खैर मकदम कर रहे हैं और भक्ति गीतों के साथ उनकी पूजा आरती कर रहे हैं। पुलिस, रेलवे और बेस्ट की जानिब से भीड़ और ट्रैफिक को मुनज्जम करने के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में घरों और अवामी मकामात पर हजारों गणेश मूर्तियां नस्ब की जा रही हैं। गणेश उत्सव के दौरान सेहत कैंप, खून के अतिये के कैंप मुनक़िद किए जा रहे हैं और सकाफती तकरीबात के साथ साथ फलाह बहबूद के प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: भारतीय महकमे मौसमियात ने पूरी गुजरात रियासत में आज मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। रियासत के 250 तालुकों में आज मूसलाधार बारिश हुई, जिससे नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। महकमे मौसमियात ने सौराष्ट्र के चंद जिलों में आज शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: गुजरात में आज शदीद बारिश हुई। भावनगर के वल्लभपुर

0: में आज 6 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं आनंद जिले के बोरसद में 5.5 इंच और अहमदाबाद में 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। गुज़श्ता 2 दिन के दौरान गुजरात में बारिश के पूरे मौसम के दौरान होने वाली बारिश की 80% बरसात हुई है। बारिश की वजह से रियासत के 35 डैम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी जानिब लंबे वक्फे के बाद इस बारिश से खरीफ की फसलों में दोबारा जान पड़ गई है। अहमदाबाद से मयूर सोलंकी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक केरला, माहे, पंजाब, कर्नाटक के जुनूबी अंदरूनी इलाके, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कल इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान में गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबरा मीटिंग के कामयाब इनकाद की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत ने कायल करने की जबरदस्त सलाहियत का मुजाहरा किया है। आलमी रहनुमाओं ने भी तरक्की पजीर मुल्कों में इश्तराक को मुस्तहकम करने और आलमी खित्ते जुनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने पर ब्रिक्स सरबरा मीटिंग की सताइश की है। अमरीका में मुकीम तजियाकार ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया इत्तेफाक राय पैदा करने की भारत की सलाहियत की अक्कासी करता है। भारत ने पन बिजली पैदा करने के बहरान के दौरान सैलाब से मुतासर नेपाल को दिसंबर के आखिर तक रोजाना 18 घंटे बिजली फराहम करने को मंजूरी दी है। और गणेश चतुर्थी का त्यौहार मुल्क भर में आज अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।